आशा भोसले की मादक आवाज़ में इस गाने को अभिनेत्री टीना मुनीम पर फिल्माया गया था। ये गीत 80 के दशक के सबसे चर्चित स्टेज परफॉर्मेंस गीतों में गिना जाता है। अमित खन्ना के बोल और राजेश रोशन का संगीत इस गाने पर थिरकने को मजबूर करता है। और अगला गीत सुनिए फिल्म कर्ज से, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, जिंदगी का हर दौर अपनी अलग कहानी लिखता है। 16 बरस की उम्र हो या 60 की, दिल तो हमेशा जवान रहना चाहता है।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी दो बत्ती रतलाम से रमेश सोलंकी, अनीता, रोहित, पूजा, दीपक, नेहा, गौरव, काजल, आयुष, रिया सोलंकी के द्वारा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें भेजी है गांधी चौक मंदसौर से महेश जाट, सीमा, मोहित, प्रीति, राहुल, स्वाति, पंकज, सोनाली, अंश और दिव्या जाट के द्वारा। फिल्म आसपास के इस गीत को स्वर दिए हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, रिश्तों की असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब कोई पास न रहे। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है दंतरे की भाटपारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि।

वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, राजगढ़ रोड धार से सुनील पाटीदार, रेखा, अमित, निकिता, पूजा, सचिन, रश्मि, ज्योति पाटीदार के द्वारा ये सभी फिल्म दीवाना के इस गीत को सुनना चाहते हैं, जिसे स्वरबद्ध किया है विनोद राठौर, अलका याग्निक ने, गीतकार समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इस खूबसूरत गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। आपकी पसंद, आपका साथ और आपका स्नेह ही इस कार्यक्रम की असली ताकत है। अगर आप भी अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश हमें ज़रूर भेजिए। हमारा पता है निदेशक आकाशवाणी केंद्र, विद्यापति नगर, उज्जैन, पिन कोड 456010, 456010। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। आकाशवाणी उज्जैन अब न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती मुंबई से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ए जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत जबरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
2: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
3: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है जी, तो उसे छिपाते हैं
2: जी।
3: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
2: और चर्चित
3: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल, और ये बताना और

0: पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे कहते हैं
1: बिल्कुल
0: कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
1: बिल्कुल सही कह रही है। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज्यादा खराब होता है, कमजोर होता है। और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
2: इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप साइंस लेते हैं सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं।
1: जी
2: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहा है। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसके फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है, तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े। मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपने सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो
1: जी
2: उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए।
1: जी
2: अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, CT स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
1: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है।
2: अगेन यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कम करना चाहिए। और अगर उनको बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल

0: चेंजेस होते हैं, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11, 12 के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज़्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। अभी की एजुकेशन सिस्टम बोलूँ तो 11, 12 का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ्स है, लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है। बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है, उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तफाक रखूंगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको।
1: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफ़ी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल,
2: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
1: जी,
2: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं, और मैं बच्चों की तरफ हूँ बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में। देर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर। एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
2: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम। वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो। तो आई थिंक समवेयर देर इज, मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। और आप कहेंगे कि द 3 इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म, दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो। एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये जरूरी है। क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
1: जी।
2: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है,
1: बिल्कुल
2: देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है. वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है. आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो, आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते, आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते. तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है.
1: जी जी.
2: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120. किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है.
1: जी.
2: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ. बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया. ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है. और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है. आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो. और अक्सर मैं उनसे
1: सही बात है बिल्कुल.
2: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
1: जी.
2: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है. सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस.
1: जी.
2: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे.
1: जी.
2: आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं. और वो नहीं बता पाते हैं.
1: क्या बात है, ये तो
2: सोचने लगते हैं.
1: बिल्कुल.
2: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए
1: तो
2: दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं कि
1: 15.
2: आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है. और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम. कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा. तो मुझे ये करना पड़ता है.
1: तो एक नई बात सामने आई है. सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए. प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे.
0: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए, तो मैं जब तक जानता हूँ मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 इयर्स प्लस 50 इयर्स प्लस प्रोफेसर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे. तो मुझे उसके जैसे बच्चे बनके पढ़ाना होता है. और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं. डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे. एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम योर एकेडमिक फादर. तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ. तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूँ. और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेन जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा.
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां. ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर?
0: डेफिनेटली है. एग्जाम्पल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है. मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था. मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला. पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश. इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है. जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंडफादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो. तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था. तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग. तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है. तो जो बच्चे 8th-9th में भी हैं अभी और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है. फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है. तो आपका फियर अगर 8th-9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा. फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं। अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे। अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नयन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पर लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूं। मैं तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तब भी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। फिजिक्स इज मैथ्स। न्यूटन रोट द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन। आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है, और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट है, वो लॉ कर रही है, और आए, अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
3: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर।
2: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंग्जाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंग्जाइटी और फियर में एक फर्क है। एंग्जाइटी एक ऐसा इश्यू है जहां, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंग्जाइटी कहते हैं।
1: जी।
2: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
1: बिल्कुल।
2: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूं, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं, और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंग्जाइटी एंड ओवरथिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
1: क्या बात है,
2: तो
1: बहुत सही बात।
2: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो। एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन। तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड कीप योर सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं यानी प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल। तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस। और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा। ये सिर्फ 60+ के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है। इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक।
1: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं।
0: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया,

0: मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है तो वो उसे होता ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज़ नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स।
1: जी
0: कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। आपकी 7 साढ़े 7 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो
1: बिल्कुल
0: पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा सुबह 1 बजे 2 बजे पढ़ता है, तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग,
1: जी।
0: बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में आते वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए। आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए। इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी
1: बिल्कुल
0: साइकिलिंग,
1: जी
0: इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल। तो मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट। वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ प्रेशर एंड वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली आपके पढ़ने में फर्क होता है। सी, एज फार एज ब्रेन इज कंसर्न, सम पीपल आर गिफ्टेड, लेट अस नॉट कंपेयर दैट वे, कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है, ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट। कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से, जैसे तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है। कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज़ पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज़ करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है।
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं, वेदांत, परिचय दें वेदांत, और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछें।
2: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ, जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं, और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग, तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं, एक और नई चीज़ मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज़ ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
3: आप इस जनरेशन के हो, इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है। हम जब छोटे थे ना, तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए, लेकिन आपको डिसीशन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर हैं। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नाइन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज अ काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
4: क्या बात
1: है, सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात।
3: वरना क्या हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए, और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल। तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो AI प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज, अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूं इसका मतलब अच्छा ही है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
4: क्या बात,
3: छोटी छोटी बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है, हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो NCERT की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करें कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके।
0: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं, और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में 2 चैप्टर पे, बाद में 4 चैप्टर पे। ना एज फार एज NCERT बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या JEE मेंस हो, उसका बेसिक बुक ही NCERT है। लेकिन NCERT बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। NCERT बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ MCQs, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप NCERT बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक। उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करने चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें। अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए। देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक MCQ में। अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए। एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7 to 3 या तो 7 to 4, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते, बिकॉज सीधी सी बातें बच्चा जो देखेगा वो करेगा। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए। तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं, और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग।

0: खुद तो
1: सो
0: देखते
1: सबसे
0: हैं।
1: पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यूज के कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
0: जी
1: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग.
0: जी
1: लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस. यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग
0: बिल्कुल
1: मेरे
0: सही
1: साथ में
0: बात है।
1: पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना
0: सही
1: था.
0: बात है।
1: मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है, आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीन होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा
0: पेट की
1: मेरा इंटरनल हीट उतना है.
0: समस्या
1: तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक, अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है. हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो. मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं. तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरली उसके बारे में सीखना भी होता है. इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो. एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है. वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है. मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है. आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको.
0: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं.
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ. तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है. जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है. उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है. मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस.
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूं. लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है. सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं. और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए।

0: में बात करते हैं तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये
1: बिल्कुल
0: माइंड ऐसा है। लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन।
1: जी।
0: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही हैं,
1: जी।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है, नरसिम्हा जी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं। वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हा जी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसा।
2: हिंसात्मक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं, और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
0: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत, मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं। इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वॉट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, क्यों वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है, और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
2: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजें, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहां टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है, और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू, क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है, और ये
1: बिल्कुल
0: फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं हैं कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल की लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी

0: क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूं, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट. तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है और वहां वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं.
1: बहुत सही बात आपने कही. दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं.
2: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलीडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर, या फिर कुछ देयर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहाँ वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो. अम्ब्रेला की जरूरत है? स्वेटर पहनना है? डबल लेयर पहनना है? कितना पूछते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान. तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत ईजी हो जाता है. है ना, कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है. और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूँ,
1: बिल्कुल,
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल,
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो. ये जो फोन है ना, इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो. इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ. अबाउट के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो. स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है. बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है. तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं. बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको.
3: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है. इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है. क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूं, तो आई हैव टू बी माई ओन एडवाइजर. तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं, नोट्स करके मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है. और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो. मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसके बाजू में स्माइली करता हूं कि नयन वेल डन. वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है. राइट, यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड. घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आप को स्माइली दो. हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है. हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही. एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग. मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूं कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पैटी थिंग्स इन लाइफ.
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है. तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
4: मेरी बेटी है, 6 साल की है. सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब. बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग. ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उसे झूठ बहुत बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में, वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत. तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना, वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके, मरते हैं मतलब क्या है या मतलब बहुत सारे सवाल. तो उसमें क्या होता है हर चीज हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे उसको लगता है कि उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है. कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप.
0: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, पूछते भी नहीं है.
1: वो ज्यादा मुश्किल है.
0: सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है. तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी. बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए. भूत है ये डराना ये सही नहीं है.
4: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने देखा नहीं है भूत को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है, है ना.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है. लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है आई वुड से बी ऑनेस्ट, बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए. उतना ही दो जितना वो समझ सके. एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग. वेरी गुड.
1: बिल्कुल.
5: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक विविध भारती. अभी जो बात चल रही थी उससे जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है. हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है.
0: डेफिनेटली.
5: हाँ, तो उसकी उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी.
0: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है. वन साइज डजंट फिट ऑल. हम कस्टमाइज करते हैं.
5: अच्छा.
0: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है.
5: हाँ.
0: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं. कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन. तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है.
5: Okay.
0: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है. ये जानना भी जरूरी है. I can't create a war between husband wife after counseling session.
1: जी ये बहुत सही बात है.
0: You know, that's not possible. तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए.
1: जी.
0: तो my challenge is getting them for the second session. पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं. तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफ स्टाइल क्या है. उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग.
1: जी. एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा.
6: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है. नाउ आई एम इन 6th स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते.
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे. कहिए नयन सर, बताइए. आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है.
3: भले आज मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे भी 2-3 नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी. मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी. ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स आते थे हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था. तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे. एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो. तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. उसका जो मेन वर्ड होता है, आप जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है. तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी. यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस. राइट. सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो. ओके.
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी, अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
0: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर रोजा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं। हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है। हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी
1: जी,
0: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी। और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं। तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी जी।
0: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है, बहुत
0: अगर वो समझदार है तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
7: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ऐ जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
8: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार, कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है, बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।
3: जाने नहीं

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबां से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ ना रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार, इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में, फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा

साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब शब्द भूल जाता हूं, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूं, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: रोग लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: ही बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं राघव चैतन्य की आवाज में फिल्म थप्पड़ से।

अनुराग सैकिया का संगीत शकील आजमी और सना मोहिद्दीन के लिखे बोल राघव चैतन्य की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म थप्पड़ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म लूडो से, आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: प्रीतम का संगीत संदीप श्रीवास्तव के लिखे बोल। लूडो फिल्म से गीत सुना आपने, फिल्म अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर देश भर में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मैनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अभियान में भाग लिया और उन्होंने कहा,
3: पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, ऐसे में हमारे सबके सामने हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुदेव कुटुम्बकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें, नशे से दूरी बहुत है जरूरी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं मंगलवार को वे तप्त पानी के पास स्थित माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध होगी। प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा में दाखिले का नया रिकॉर्ड बना है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 66,000 अधिक है। विभाग ने बताया कि ऑनलाइन ई प्रवेश व्यवस्था, दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन और कॉलेजों में हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं से प्रवेश प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देवास जिले में खेती को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग व बागवानी जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यों को करों के हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को और गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में खंडवा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वेयर हाउस से मूंग की निकासी अब केवल SDM की लिखित अनुमति से ही हो सकेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए

0: युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र गुएन थुई लिन को हराया 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: तत् आ थे थे तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाथ दिग दिग नाथ दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग

जान गई राधा। साथ यथ यथत, साथ यथ यथत, साथ यथ यथत,

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

किया है। उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: أشهد أن لا
1: शहनशाह बहादुर शाह जफर की खिदमत में गुलाम बख्त खां कोर्निश बजा लाता है।
2: नहीं नहीं, बख्त खां आप गुलाम नहीं हैं, आप तो मुल्क के सिपह सालार हैं। इस बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्मीदों की

0: आखिरी किरण।
1: शहनशाह का इकबाल बुलंद रहे। हम और हमारे तमाम सिपाही जो कुछ भी हैं आपकी ही बदौलत हैं। जजाक अल्लाह, ऐसे नाजुक माहौल में भी आप अशआर इरशाद फरमा रहे हैं।
0: कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं बख्त खान, जिनके जख्मों से बहते लहू की रफ्तार दम तोड़ने लगती है, फिर ये जख्म रिसना शुरू कर देते हैं और इंसान अपने आप को बेहिरासा पाने लगता है, और तब तब यही रिश्ते जख्म दिल को जुबान बनाकर अशार कहने की ताकत अता कर देते हैं।
1: बजा फरमा रहे हैं जहां पना, जान की अमा पाऊं शहनशाह, अशार, और वो भी ऐसे वक्त में।
0: हाँ हाँ बख्त खां, अशार की आमद ऐसे ही वक्तों में होती है। हमारी कमसिनी में मौलवी साहब की बयान की हुई एक बात याद आ गई। कुछ इंसान अपने आप को चौतरफा अंधेरों, मुश्किलों, मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं, तो उनसे नजात पाने के लिए उनका कल्ब बिलबिला उठता है, वजूद थर्राने लगता है, सांसें चीखों में बदल जाती हैं, रोशनी रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं अशार।
1: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार, ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या ना महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताजा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
0: आंसू बहाए नहीं जाते बख्त खां, ये तो खुद बखुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
0: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
0: क्या कह रहे हैं बख्त खां?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूं, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
0: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के भीड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या

0: रात भर हम यहीं रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यहीं रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान?
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें। हाँ। और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
1: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाह।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहनशाह शाहजहां के वारिस हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झां कर लाल किला तामीर करवाया, और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए, और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए।

0: सर, उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त पहुंच चुका है। आलीजा,
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मोहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाईं, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से

0: रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेस बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चलें, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने।
4: कान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चलें।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा। मौर्रिख लिखेगा, सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
0: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
1: वो आ गए।
0: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
0: मलिकाए आलिया,
5: मेरे सरताज,
0: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
5: बख्त खान

0: हमने कहा कि अब जाओ, अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की। मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मिया बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या
1: क्या शानदार,
0: कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल
1: बिल्कुल
0: पर्सन,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत।
1: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ
0: वो
1: दिलचस्प
0: ढूंढना
1: बातें?
0: क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी कि
1: अच्छा
0: अरे हमें ये इधर नहीं देखा,
1: हाँ
0: हमको शूट करो। क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी। और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
1: जी
0: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
1: बिल्कुल।
0: सा
1: और
0: छोटा
1: वो
0: सा,
1: जिस तरह से
0: हाँ
1: वो किचन
0: बड़ा
1: चाय बनाते
0: टेस्टफुली
1: हैं,
0: किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, तो उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
1: वाह
0: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी
0: हाँ
1: चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं,
0: हाँ
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरेडी
0: हाँ
1: बनाई
0: मजाक
1: है।
0: उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि
1: जी
0: और दीप्ति मिलके।
1: जी वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी
0: जी या
1: परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते
0: कभी
1: हैं,
0: जीनत
1: कभी
0: अमान का आता
1: जी
0: है
1: जी
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या
0: रवि
1: कमाल,
0: ने
1: देवानंद
0: तो
1: वाला तो अद्भुत।
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी,
1: जी
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने
0: मैं
1: तो
0: तो
1: हाँ
0: हाँ
1: कह
0: कर दी,
1: दी।
0: हाँ वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वह बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या
0: का।
1: दिल, उसमें तो जो
0: हाँ
1: दीप्ति लगी
0: यस, वो
1: है।
0: बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर
1: जी
0: किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत। तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत।
1: जी ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
1: तीसरी
0: इसका
1: मंजिल।
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए, विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा लें।
0: डांस करवाए। तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था।

0: गुलने, और वहां हमारा दिन भर चलता था। तब VHS का जमाना था,
1: जी
0: हाँ, तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा, बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल, ये सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, ऊब गया वो भी, और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही, ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूं। मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली। तो इतनी मजे की बात होती
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: जी बहुत बहुत
1: उसका
0: अच्छा,
1: जिक्र हम करना
0: हाँ।
1: चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं आखिरकार, जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई।
1: जी
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई, हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहां तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के, उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में, हाँ,
1: जी जी
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है, विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है,
1: जी
0: विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है नहीं, वो
1: जी
0: सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा।
1: ओ
0: तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर, कि
1: वाह
0: तुम शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे, तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले, फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब करके,
1: जी
0: वेरी वेरी नाइस रिकॉर्डिस्ट, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आइए, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो, तो फिर बैठ जाओ दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा, और क्या बताऊं कि ऐसा मेल, जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटेस्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं, हाँ, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये जो कि वो जाता है वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी, तो पहले तो खुश होता है कि हाँ

0: मेरा इंतजार कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और
1: जी
0: वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, नहीं इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव, और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे।
1: गजब।
0: क्यों कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा? फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, फिर काम हमारा चालू हो गया। और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना,
1: गजब।
0: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे की घर बुरी हालत में है, तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है, और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना?
1: वाह वाह
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे, वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो ना। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला,
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते हैं वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बतूर
0: ना,
1: का। जी
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है, को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो

0: फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन
0: क्या,
1: है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना, लिरिसिस्ट, फिर
1: जी
0: राजकमल का म्यूजिक,
1: हाँ
0: और फिर गाने वाले, और
1: हाँ
0: फिर मेरे एक्टर, और मैं
1: कवाल, ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।
2: सारे गम बदली।

0: चकित भय सगरे नगरे काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया,
2: हाँ।
1: ये जो बात आपने बताई कि हाँ। मोटरसाइकिल हाँ। और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और

0: इतना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बद्र,
1: जी
0: इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते, है
1: जी,
0: तो
1: आंसू
0: वो
1: बह रहे हैं
0: इस,
1: उसके और
0: हाँ
1: पूरा
0: सुबह
1: एक
0: रहे,
1: माहौल आप बनाते हैं
0: हाँ।
1: उसमें।
0: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रिल्यूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया।
1: जी
0: आई
1: और
0: लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल ये तो कथा में भी आता है, उसकी
0: हाँ
1: बात आगे
0: हाँ
1: करेंगे।
0: जी
1: बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो
0: हाँ
1: तो एकदम अलग शैली का गाना है।
0: हाँ वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं,
1: बिल्कुल
0: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या, मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं, और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, वो
1: हाँ
0: तीनों अलग अलग अपना गाते हैं,
1: बिल्कुल
0: हाँ, और
1: बिल्कुल
0: इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल। तो ये गाना इस
0: अच्छा
1: इंटरव्यू में प्यार
0: क्या
1: लगावत
0: क्या
1: भी
0: सुनाओगे? ओके
1: सुनेंगे।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा
0: हाँ
1: में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए

0: उन्होंने बिल्ली मतलब मैं, और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना, और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल,
1: फूल।
0: जसवंती का फूल, और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश,
1: हाँ
0: इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो उसमें सारे अलग
0: क्या,
1: अलग
0: और
1: एनिमेशंस।
0: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए, बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
1: कोई
0: कि,
1: टकराव होता
0: और बहुत बार, बहुत बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सा पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की यह श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन सकते हैं, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र आदित्य निगम, नमस्कार। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है लोकप्रिय कार्यक्रम युव वाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए इस सफर में।

0: कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ दोस्तियां किसी वादे से नहीं बस एक एहसास से जुड़ी होती हैं।
1: कभी किसी की एक छोटी सी बात हमारा पूरा दिन अच्छा कर देती है। कभी किसी दोस्त के साथ बिताया हुआ एक साधारण सा पल सालों बाद भी सबसे खूबसूरत याद बनकर हमारे पास लौट आता है।
0: और आज ऐसी ही यादों और खूबसूरत रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए हाजिर हैं हम। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के युवाओं के अपने प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आयशा।
1: और मैं हूं प्रतिभा। आप सभी को हमारी ओर से इस खास रविवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। खास इसलिए क्योंकि आज है दोस्ती का दिन, फ्रेंडशिप डे। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने हमारी हंसी में अपनी हंसी ढूंढी, हमारी परेशानियों में हमारा हाथ थामा, हमारी गलतियों पर हमें टोका
0: है, जिसे हम खुद अपने दिल और अपनी पसंद से चुनते हैं। परिवार हमें जन्म के साथ मिलता है, रिश्ते हमें परिवार के साथ मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। और शायद इसीलिए दोस्ती में एक अलग ही अपनापन होता है।
1: जी बिल्कुल आयशा। और आज फ्रेंडशिप

0: इस स्पेशल में हम बात करेंगे इसी खूबसूरत रिश्ते की। दोस्ती क्या है? एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है?
1: और बदलते दौर में जब हमारी दुनिया सोशल मीडिया और वर्चुअल कनेक्शन से भर गई है, तब सच्ची दोस्ती की पहचान आखिर क्या है?
0: और श्रोताओं, इसलिए आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की।
1: क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसके साथ उसका परिवार, उसके दोस्त और उसके सपने भी प्रभावित होते हैं।
0: हमारा युवा हमारे देश की ऊर्जा है, उसके हाथों में हुनर है, उसकी आंखों में सपने हैं और उसके भीतर कुछ नया करने की क्षमता है।
1: तो क्यों ना उन सपनों को किसी नशे के गिरफ्त में जाने से बचाया जाए। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि एक युवा खुद को नशे से दूर रखने का संकल्प कैसे ले सकता है
0: और एक स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार युवा ही कैसे विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकता है।
1: बिल्कुल प्रतिभा। और युवाओं की जब बात हो रही है तो शिक्षा की बात भी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अच्छी शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन उच्च शिक्षा की फीस कई बार परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
0: जी बिल्कुल आयशा, और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की, एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।
1: आज हम समझेंगे कि ये योजना क्या है, किस तरह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि कई बार सपनों की कमी नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने के साधनों की कमी होती है।
0: और अगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो शायद किसी का सपना बीच रास्ते में रुकने से बच सकता है।
1: और आज के युववाणी कार्यक्रम के अंत में हम लेकर आएंगे रोजगार समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
0: तो तैयार हो जाइए, दोस्ती की यादों से लेकर युवाओं के भविष्य तक, जागरूकता से लेकर शिक्षा तक और शिक्षा से रोजगार के अवसरों तक, एक ऐसे सफर के लिए जिसमें बातें होंगी दिल की भी और जिंदगी की भी।
1: तो आइए इस फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों को याद करते हैं और उन्हीं दोस्तों के नाम सुनते हैं आज का पहला सुरीला गीत।

0: अभी अभी आपने सुना फिल्म याराना का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।
1: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ शायद हम में से कई लोग अपने अपने किसी खास दोस्त के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। किसी को स्कूल की वो आखिरी बेंच याद आई होगी, किसी को कॉलेज की कैंटीन, और किसी को शायद वो दोस्त जिससे आज बहुत दूर है लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी जगह आज भी बिल्कुल वैसी ही है।
0: सच में आयशा, दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हमारे आसपास की दुनिया, परिस्थितियां और ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ये यादें नहीं बदलती। हम बड़े हो जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, नौकरियां बदल जाती हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन बचपन के दोस्तों के साथ बिताए हुए वो छोटे छोटे पल कभी नहीं बदलते।
1: और बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ और होती है प्रतिभा, क्योंकि वो दोस्त हमें उस समय जानते हैं जब हमें खुद भी ठीक से पता नहीं होता कि हम कौन हैं। उन्हें हमारी वो नारियल के तेल से चिपके बालों वाली शक्ल से लेकर वो गंदी सी हैंड राइटिंग तक याद होती है, जिसे देखकर आज हम खुद एम्बैरेस हो जाएं।
0: और वो दोस्त जिनके साथ कभी टिफिन बांटकर खाया, कभी एक दूसरे की नोटबुक्स में क्लास वर्क या होमवर्क पूरा किया, कभी एक दूसरे की गलतियां छिपाई और कभी खुद ही एक दूसरे की शिकायत कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हमारी वो सारी छोटी छोटी आदतें भी याद होती हैं जिन्हें शायद आज हम खुद भूल चुके हों।
1: बिल्कुल, उस उम्र में दोस्ती की परिभाषा बहुत ही साधारण हुआ करती थी। जिसके साथ बैठना अच्छा लगे वो दोस्त, जिसके साथ टिफिन खाना अच्छा लगे वो तो पक्का दोस्त, और जो अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ हमारे साथ शेयर कर ले, बस फिर तो दोस्ती एकदम पक्की।
0: बिल्कुल आयशा, और तो और बचपन में दोस्ती के लिए कोई ओकेजन की भी ज़रूरत नहीं होती थी। बस स्कूल की छुट्टी हुई और दोस्त के घर पहुंच गए, बारिश हुई तो किताबें छोड़कर बाहर निकल गए खेलने, और अगर किसी दोस्त के घर नया वीडियो गेम, कोई नया गेम क्रिकेट बैट या कोई नई साइकिल आ गई हो तो समझिए पूरा का पूरा मोहल्ला ही वहां जमा हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और उन दिनों में ना जो चलो मिलते हैं ऐसा कुछ कहने का कोई प्लान ही नहीं बनाना पड़ता था, ना कोई कैलेंडर देखना, ना कोई शेड्यूल चेक करना, और ना मैसेज करके पूछना कि भाई फ्री हो क्या। बस घर के बाहर खड़े हो जाओ और आवाज लगा दो कि अरे बाहर आना, और दोस्त बाहर।
0: आज सोचती हूँ तो लगता है कि बचपन में हमारे पास समय कितना सारा था ना, लेकिन चीजों का अभाव था। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन समय का अभाव है।
1: बिल्कुल, और शायद इसीलिए बचपन की दोस्ती की यादें आज और भी प्रीशियस लगती हैं, क्योंकि तब हम दोस्तों के साथ सिर्फ समय नहीं बिताते थे, हम अपना पूरा बचपन उनके साथ बांटते थे।
0: आज हम दोस्ती को शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। किसने मैसेज का रिप्लाई कितनी देर में किया, किसने हमारे सोशल मीडिया स्टोरी देखी लेकिन रिप्लाई नहीं किया, किसने बर्थडे पर विश किया और किसने नहीं किया। लेकिन बचपन में दोस्ती इतनी कैलकुलेटेड वाली नहीं होती थी।
1: नहीं नहीं बिल्कुल प्रतिभा, वहाँ ना दोस्ती में कोई हिसाब ही नहीं होता था
0: जी,
1: बस साथ होता था। इस बात पे ना मुझे मोहम्मद इफ्तिखार शफी का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में, सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में कि जिनसे मिलिए तो तन्हाई खत्म होती है। लगता है कि ये पंक्तियाँ शायद दोस्तों के लिए ही कही होंगी। कितनी खूबसूरत बात है ना प्रतिभा।
0: बिल्कुल आयशा, बहुत ही खूबसूरत। वाकई कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही हमारा अकेलापन जो है ना, हमारा अकेलापन बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। उनके सामने हमें अपने शब्दों को सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने दुख को छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हर बार ये बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम ठीक हैं या नहीं।
1: बिल्कुल, और दोस्तों के साथ में ना हम बिल्कुल वैसे हो सकते हैं जैसे हम सच में हैं। अगर हम खुश हैं तो खुलकर हंस सकते हैं, अगर दुख है तो बहुत चुप भी रह सकते हैं, और अगर कुछ कहने को हमारे पास कुछ नहीं है तो बिना कुछ कहे भी उनके साथ बहुत देर तक बैठ सकते हैं। शायद सच्ची दोस्ती यही है श्रोताओं की, जहां खामोशी भी बातचीत करने लगे।
0: जी, और शायद इसलिए बचपन के दोस्त हमारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो हमारे बीते हुए वक्त के गवाह होते हैं। उन्हें देखकर हमें अपना वो वर्जन याद आता है जो बड़ा होने की इस दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है।
1: तो आज फ्रेंडशिप डे पर अपने उस पुराने दोस्त को ज़रूर याद कीजिए जिसके साथ आपने अपना बचपन बांटा, जिसके साथ आपकी सबसे बेवकूफ़ी भरी लेकिन सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी हैं, और अगर मुमकिन हो तो उसे एक मैसेज भी कर दीजिए, क्योंकि कुछ रिश्तों को हल्की हल्की आँच में सेकते रहने की ज़रूरत होती है।
0: और अब बचपन की इन्हीं गलियों और दोस्तों की इन्हीं यादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्ती सिर्फ बचपन की कहानी नहीं है, उम्र के साथ दोस्ती बदलती है, दूरियां आती हैं, जिंदगी बदलती है, लेकिन क्या दोस्ती का एहसास भी बदल जाता है, इस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में।
1: लेकिन उससे पहले दोस्ती की इन खूबसूरत यादों के नाम सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इसी पर ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म शोले से, जिसे गाया था मन्ना डे और किशोर कुमार ने, संगीत था आर डी बर्मन का और गीतकार थे आनंद बख्शी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा था, बचपन की दोस्ती से आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उन दोस्तों की जो वक्त के साथ हमसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन दिल से शायद कभी दूर नहीं हुए। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी थोड़ी बिजी होती जाती है। पहले दोस्त रोज मिलते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में, और फिर कभी कभी तो सालों निकल जाते हैं। किसी का शहर बदल गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे, सबकी अपनी अपनी दुनिया बन जाती है। लेकिन फिर अचानक किसी दिन फोन बजता है, अरे भाई कैसी चल रही है जिंदगी? एक सुकून भरी जानी पहचानी आवाज, बस उस एक आवाज के साथ ऐसा लगता है कि जैसे हम कई साल पीछे लौट आए। फिर वही पुरानी बातें, वही पुराने जोक्स, वही बेवकूफियां और वही बेफरवा हंसी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कई बार इतने सालों बाद मिलने के बाद भी बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां आखिरी बार छोड़ी थी। जैसे बीच में गुजरा अरसा कोई मायने ही ना रखता हो, जैसे वो सारी कश्मकश जिससे हम जूझ रहे हैं वो शून्य मात्र हो। यही तो दोस्ती है आयशा। जिंदगी कितनी भी आगे निकल जाए, कुछ लोग हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। और शायद इसीलिए ऐजी जोश की ये पंक्तियां दोस्तों को हमने इतने खूबसूरत ढंग से बयां करती हैं। गुजरे जो अपने यारों की सोबत में चार दिन, ऐसा लगा बसर हुए जन्नत में चार दिन।
6: वाह, अपने यारों की सोबत में चार दिन। कभी कभी सच में ऐसा ही तो लगता है ना कि चार दिन की छुट्टियां हो, दोस्तों का साथ हो और कोई छोटी सी ट्रिप हो, या बस शाम को किसी पुराने दोस्त के साथ एक चाय की मेज पर बैठकर 2 घंटे बातें कर ली जाएं, और वो 2 घंटे बाकी पूरे हफ्ते से सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं।
0: और शायद दोस्ती की खूबसूरत इसी में है कि हमसे हमेशा बड़े बड़े मोमेंट्स नहीं होते हैं दोस्ती में। कभी अचानक आया कोई फोन कॉल, कभी किसी पुराने फोटोग्राफ को देखकर अचानक हंस पड़ना, या छोटी छोटी चीजें जो बाद में बड़ी यादें बन जाती हैं।
6: बिल्कुल, लेकिन आज ना दोस्ती का एक नया स्वरूप ही हमारे सामने आ गया है दोस्तों, कि ये सोशल

0: मीडिया फ्रेंडशिप्स. हमारे फ़ोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं और चैट ऐप्स पर ग्रुप्स भी हैं. हम एक दूसरे की ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी सी अपडेट्स देखते रहते हैं, लेकिन सवाल फिर भी वहीं का वहीं कि क्या हर कनेक्शन, हर फॉलोवर दोस्ती ही है?
1: शायद नहीं आयशा, क्योंकि किसी की स्टोरी रोज़ देखना और किसी की खामोशी को समझना दोनों बहुत अलग बातें हैं. किसी की पिक्चर पर हार्ट रिएक्शन भेज देना आसान है, लेकिन जब वो सच में परेशान हो तो उसके पास बैठना शायद वही दोस्ती है. किसी की सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना आसान है, लेकिन उसकी असफलता में उसके साथ खड़ा रहना यही तो दोस्ती है.
0: बिल्कुल. और शायद सच्चा दोस्त वो नहीं जो हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिला दे. सच्चा दोस्त तो वो है जो ज़रूरत पड़ने पर हमें टोक सके, कह सके कि ये मत करो, और कभी कह सके कि तुम गलत हो, और हमारी हज़ार गलतियों पर भी हमें सिखाए समझाए, ना कि मुंह मोड़ ले.
1: क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं है, कभी कभी दोस्ती का मतलब आईना बनना भी होता है. हमें हमारी अच्छाइयाँ दिखाना और हमारी कमियाँ भी. और शायद यही वो जगह है जहाँ दोस्ती हमारे जीवन को सिर्फ खूबसूरत नहीं बेहतर भी बनाती है.
0: और इसीलिए आज फ्रेंडशिप डे पर हम अपने दोस्तों के बारे में अगर सोचें तो सिर्फ ये नहीं सोचें कि कौन हमारे साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, बल्कि ये भी सोचें कि कौन है वो व्यक्ति जिसके सामने हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता.
1: कौन है वो जिसे हम रात के किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं?
0: और कौन है वो जो हमारी सफलता पर जेन्युइनली खुश होता है?
1: और कौन है वो जो हमारी परेशानी देखकर सिर्फ सब ठीक हो जाएगा नहीं कहता, बल्कि पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ?
0: और अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो श्रोताओं आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा, नौकरी, सफलता ये सब ज़रूरी है, लेकिन कोई ऐसा इंसान होना जिसके सामने हम अपने दिल की बात रख सकें ये किसी दौलत से कम नहीं.
1: और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई तो आज फ्रेंडशिप डे के बहाने एक छोटी सी शुरुआत कीजिए. फ़ोन उठाइए, एक मैसेज कीजिए, याद आ रहे हो बस इतना ही कह दीजिए.
0: क्योंकि दोस्ती किसी बड़े फिल्मी डायलॉग की मोहताज नहीं है बंधु, कभी कभी एक छोटा सा कैसा है तू भी बहुत कुछ कह जाता है.
1: और अगर आपका वो बचपन का दोस्त आज आपके पास नहीं है तो आज उसे याद कीजिए. उसके साथ बिताए वो चार दिन, चार साल या शायद चार दशक, जो भी आपकी कहानी का हिस्सा रहे हों, उन्हें दिल में फिर से जी लीजिए.
0: क्योंकि ज़िंदगी में हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हासिल नहीं किया जाता, बस संजो कर रखा जाता है.
1: तो श्रोताओं, आज का ये फ्रेंडशिप डे स्पेशल उन तमाम दोस्तों के नाम है जो हमारी ज़िंदगी में आए, कुछ समय ठहरे, कुछ यादें छोड़ गए, और कुछ ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं.
0: उन दोस्तों के नाम जिनसे मिलकर तन्हाई ख़त्म होती है, और उन दोस्तों के नाम जिनकी सोहबत में गुजरे चार दिन कभी कभी जन्नत जैसे लगते हैं,
1: और उन दोस्तों के नाम भी जो हमसे दूर हैं लेकिन एक फ़ोन कॉल की दूरी पर आज भी उतने ही अपने हैं.
0: तो आज अपने किसी दोस्त को याद कीजिए, और अगर दिल कहे तो उसे बता भी दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है. क्योंकि हम अक्सर अपने दोस्तों को ये बताना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की तपती दोपहरी में पीपल की छाया हो तुम.
1: तो चलिए दोस्ती की इन्हीं खूबसूरत यादों को अपने साथ रखते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं.

0: यारों के लिए ये खूबसूरत गीत आपने सुना सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से, जिसे गाया था अरिजीत सिंह ने, गीतकार थे कुमार और संगीत था रोचक कोहली का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, दोस्ती की इन खूब

0: युवावस्था में दोस्ती और संगत का असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसी उम्र में हम सपने देखते हैं, नए फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा तय करना शुरू करते हैं।
1: संगत अच्छी हो तो इंसान आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन अगर संगत गलत दिशा में ले जाए तो वही दोस्ती कभी कभी हमारे सपनों के रास्ते में भी रुकावट बन सकती है।
0: और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान की, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान।
1: आज यानी 2 अगस्त 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। और श्रोताओं, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, यह 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है।
0: यानी नशे के खिलाफ जागरूकता और युवाओं की भागीदारी का ये सिलसिला अगले 100 सप्ताह तक जारी रहेगा और इस पूरे अभियान का नेतृत्व माय भारत के युवा स्वयंसेवकों के हाथों में होगा।
1: इस अभियान में देश भर के 10,000 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे।
0: सोचिए प्रतिभा, 1 करोड़ से ज्यादा युवा अगर एक साथ संकल्प लें कि वे नशे से दूर रहेंगे तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है।
1: बिल्कुल आयशा, और इस अभियान में सिर्फ युवा स्वयंसेवक ही नहीं, NSS, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लब और NGOs भी भाग लेंगे।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यानी नशे के खिलाफ ये लड़ाई किसी एक संस्था की नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों की साझी जिम्मेदारी है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है आयशा कि यह अभियान को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, हर रविवार युवाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी।
0: बिल्कुल, जैसे कि खेलकूद, वॉकथॉन, साइकिल रैली, योग और ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाटक जैसे जागरूकता के कई कार्यक्रम।
1: यानी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि अपनी ऊर्जा को नशे में नहीं बल्कि खेल, फिटनेस, रचनात्मकता और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं।
0: और प्रतिभा, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए इस अभियान की ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति की आदत नहीं रह जाता, कई बार इसका असर उसके परिवार तक पहुंचता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, करियर और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात, सपने पीछे छूट जाते हैं।
0: बिल्कुल, जिस उम्र में एक युवा को अपने भविष्य की नींव मजबूत करनी चाहिए उसी उम्र में नशा उसकी ऊर्जा और संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।
1: इसलिए नशे से दूर रहना सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला नहीं है, अपने भविष्य के पक्ष में लिया गया फैसला भी है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए अभियान की सोच सिर्फ इतनी नहीं है कि नशा मत करो, बल्कि सवाल ये भी है कि नशे की जगह आखिर हम क्या चुनें।
1: खेल चुनिए, संगीत चुनिए, किताबें चुनिए, अपने दोस्तों के साथ कोई हेल्दी एक्टिविटी चुनिए और सबसे बढ़कर अपने सपनों को चुनिए।
0: अगर युवा स्वस्थ होंगे तो परिवार मजबूत होंगे श्रोताओं, और अगर युवा जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, और अगर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो विकसित भारत की नींव भी मजबूत होगी।
1: और श्रोताओं, ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है बल्कि लगातार 100 सप्ताह तक चलने वाली यूथ पार्टिसिपेशन की एक लंबी यात्रा है।
0: और अब सवाल आता है कि अगर हम युवा हैं तो हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं?
1: बहुत छोटी शुरुआत से दे सकते हैं। सबसे पहले खुद नशे से दूर रहने का संकल्प लेकर, फिर अपने दोस्तों को भी इसके लिए मोटिवेट करके,
0: और माय भारत के आधिकारिक मंच के माध्यम से इस अभियान से जुड़कर आप नशा मुक्ति की डिजिटल प्लेज भी ले सकते हैं।
1: तो फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती का एक नया मतलब भी निकालते हैं। अपने दोस्त से कहिए, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियों में नहीं सही फैसलों में भी खड़ा हूँ।
0: अगर तुम गलत रास्ते पर जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा,
1: और अगर कभी तुम परेशानी में फंसोगे तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
0: क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो सिर्फ पार्टीज में साथ ना दे बल्कि मुश्किल फैसलों में भी साथ खड़ा रहे,
1: जो गलत आदत को बढ़ावा ना दे बल्कि सही रास्ते की तरफ हाथ पकड़ कर ले जाए।
0: तो श्रोताओं, 2 अगस्त से शुरू हो रहे इस अभियान का संदेश बहुत सीधा है, नशे को ना और जिंदगी को हाँ।
1: तो इसी सकारात्मक सोच और मजबूत संकल्प के साथ आइए सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: दोस्तों, आपने सुना ये गीत रंग दे बसंती फिल्म से, जिसे गाया था मोहम्मद असलान ने और जिसके गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीतकार थे एआर रहमान।
1: श्रोताओं, अभी हमने बात की कि एक ऐसे अभियान की जो युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देता है, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संकल्प ही नहीं, अवसर भी ज़रूरी होते हैं। और जब बात अवसरों की हो तो उच्च शिक्षा उन सबसे मजबूत माध्यमों में से एक है जो युवाओं के सपनों को नई उड़ान देती है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विद्यार्थी के पास प्रतिभा तो होती है, मेहनत करने का जज्बा भी होता है, फिर भी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से उसके सपनों की राह मुश्किल हो जाती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है।
1: इस योजना का उद्देश्य यही है कि आर्थिक स्थिति किसी भी मेधावी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में बाधा ना बने। यदि किसी छात्र या छात्रा का चयन अपनी योग्यता के आधार पर देश के चिन्हित उच्च शिक्षण संस्थानों में हुआ है तो वह इस योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटी और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं।
0: यानी कि अब एजुकेशन लोन के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उन्हें एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सहायता भी दी जाती है। इससे पढ़ाई का आर्थिक बोझ काफी कम हो सकता है।
1: इस योजना का लाभ देश के 1425 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है। इनमें IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित अनेक प्रतिष्ठित सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं। हालांकि प्रबंधन कोटा या NRI कोटा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
0: और श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात, इस योजना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। विद्यार्थी एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं, ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
1: सरकार का प्रयास है कि किसी भी योग्य विद्यार्थी का सपना केवल आर्थिक कारणों से अधूरा न रह जाए, क्योंकि जब शिक्षा सबके लिए सुलभ होगी तभी देश को अधिक कुशल, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति मिलेगी।
0: तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य यही है कि आर्थिक चुनौतियां किसी भी मेधावी विद्यार्थी के सपनों के आड़े न आए। सही जानकारी और सही समय पर मिला सहयोग किसी भी युवा के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।
1: और अब इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ जरूरी रोजगार से जुड़े समाचारों की जो युवाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
0: लेकिन श्रोताओं, उससे पहले पेश है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

0: प्रीतम का।
1: अब समय है रोजगार समाचार का। श्रोताओं, अगर आप अपने करियर की शुरुआत किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान से करना चाहते हैं तो आज के रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी। पहली भर्ती देश के अग्रणीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो से जुड़ी है, जबकि दूसरी भर्ती मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है।
0: शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी के कुल 410 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अवसर उन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं।
1: इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग सहित कई शाखाओं के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस के उम्मीदवारों के लिए भी पद निर्धारित किए गए हैं।
0: इस भर्ती की एक और खास बात यह है कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करना चाहिए। यदि आप अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, यह थी आज की पहली महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण का यह अवसर आपके करियर की नई दिशा दे सकता है।
0: तो श्रोताओं, अब कई बार सफलता की शुरुआत किसी बड़े पद से नहीं होती है, ये समझने की बात है, और सही अवसर से ये सफलता की शुरुआत की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी योग्यता के अनुसार निकलने वाली भर्तियों पर आप नियमित नज़र रखें और समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें।
1: और अब दूसरी महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी देने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये गीत क्रिश फिल्म से कोई तुमसा नहीं, जिसे गाया था सोनू निगम, श्रेया घोषाल ने, गीतकार थे नासिर फराज और संगीत था राजेश रोशन का। तो दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPRDC की, जिसने मैनेजर टेक्निकल के 18 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
1: यह भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में BE या BTEC किया है और गेट 2024-2025 या 2026 का वैलिड स्कोर रखते हैं।
0: इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को केवल 12 लेवल के अनुसार 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
1: यदि आप सड़क एवं अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी MPRDC की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, आज के रोजगार समाचार में हमने आपको दो महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी दी। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन पदों के लिए पात्र है तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन अवश्य करें। आप
1: याद रखिए, सही समय पर मिली सही जानकारी आपके करियर को नई दिशा दे सकती है।
0: तो श्रोताओं, आज फ्रेंडशिप डे के इस विशेष अवसर पर हमने उन रिश्तों को याद किया जिन्हें हम अपने दिल से चुनते हैं। हमने बात की बचपन की यादों की, दूरियों के बावजूद कायम रहने की, अपने दोस्ती की और उस सच्चे दोस्त की जो हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं।
1: इसी क्रम में हमने जाना कि एक अच्छी संगत हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के माध्यम से हमने समझा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने सपनों और देश के भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।
0: इसके बाद हमने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की जानकारी साझा की, जिसके माध्यम से योग्य विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को और आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने समझा कि कैसे ब्याज की सहायता देकर इस लाभ को और ज़्यादा लाभकर बनाया जाता है। साथ ही रोजगार समाचार में हमने इसरो और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी भी आप तक पहुँचाई।
1: उम्मीद है कि आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम की कोई बात आपको अच्छी लगी हो या आज की चर्चा ने आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया हो तो यही हमारे प्रयास की सबसे बड़ी सफलता होगी।
0: और साथ में उन दोस्तियों और उन सखों को याद कर लीजिए, उन अपने बहुत प्यारे फ्रेंड्स को याद कर लीजिए, उन्हें मैसेज करिए और अपने पुराने बचपन के दिनों को एक बार फिर से जी लीजिए, क्योंकि अच्छे दोस्त अच्छी संगत आपके जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकती हैं और यही दिशा आपके उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से हम लेंगे इजाज़त।
1: घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नशे से दूर रहिए और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं प्रतिभा
0: और मैं आयशा, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी, युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। मगर आप सुनते रहिए FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन।

आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, 6 बज चुके हैं और अब वक्त है प्रभु की भक्ति में डूब जाने का, प्रभु का स्मरण करने का। तो आइए भजन को माध्यम बनाते हैं और शुरू करते हैं भजन संध्या कार्यक्रम। सावन का पावन माह शुरू हो गया है और बाबा महाकाल की सवारी भगवान चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होकर प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलने वाली है। भक्ति से ओतप्रोत बाबा महाकाल का आइए सुनते हैं मधुर भजन।

श्रोताओं, श्रावण माह में दूर दूर से कांवड़िए बाबा महाकाल को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और कांवड़ियों की यह यात्रा श्रावण माह से शुरू होकर भादो माह तक सतत चलती रहती है। भक्ति में डूबा एक मधुर शिव भजन सुनिए।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं माँ जगत जननी माँ जगदेश्वरी के चरणों में अर्पित एक मधुर भजन जगजीत सिंह जी की आवाज में।

श्रोताओं, माँ की आराधना के बाद अब आपको सुनवाते हैं कृष्ण भजन। हरिओम शरण की मधुर आवाज में भजन का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, भक्ति शक्ति और भजन का ये संगम हमें ईश्वर के समीप ले जाने में मदद करता है। आज की भजन संध्या को देते हैं विराम। मैं अदिति निगम आपसे लेती हूँ विदा, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम जो केंद्रित है 84 महादेव दर्शन यात्रा पर।

0: श्रावण मास अर्थात आस्था, आराधना, सेवा और शिव भक्ति का पावन पर्व। यह वह समय है जब पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है और श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन एवं पूजन के लिए उत्साह पूर्वक निकल पड़ते हैं। उज्जैन, जो स्वयं महाकाल की नगरी के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान रखता है, यहाँ वर्षों से आयोजित होने वाली 84 महादेव दर्शन यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, संगठन और सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का एक प्रेरक माध्यम बन चुकी है। इस वर्ष भी हजारों मात्र शक्तियाँ इस यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करेगी। इस यात्रा की विशेषता यह है कि इसमें केवल दर्शन ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सामाजिक समरसता, सेवा भाव और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प भी जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क यात्रा, भोजन, प्रसाद और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं इस आयोजन को और विशिष्ट बनाती है। आज हमारे साथ ऐसी ही यात्रा से जुड़े अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन के प्रमुख श्री महेंद्र जी यादव, जो इस आयोजन समिति में भी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी कुछ विशिष्ट बातें। नमस्कार महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
1: जी सादर नमस्कार, और आकाशवाणी में सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री महाकाल, बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी महेंद्र जी, 84 महादेव दर्शन यात्रा, इस आयोजन को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: देखिए, बृहद रूप से ये आयोजन अभी पिछले 3-4 वर्षों से हमारी समिति करती आ रही है। जी। हम लोग

0: जब हम लोग जन्म हुआ था तो हम देखते आ रहे थे कि 84 महादेव की यात्राएं वो करती आ रही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन व्यस्तता भरी जिंदगी में ये धीरे धीरे कम होता गया था। समय के साथ मैं होती तो हमने प्रयास किया है कि हम लोग अपनी ओर से व्यवस्थाएं करें और माता बहनों को जागृत करें, प्रेरित करें। तो इस श्रावण मास के पवित्र समय में 84 महादेव की यात्रा किसी भी माध्यम से वो करें।
1: महेंद्र जी, इस बार 10,000 से अधिक मातृशक्तियाँ इसमें भागीदारी कर रही है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं?
0: देखिए, ये चौथा वर्ष है इस यात्रा का। जब ये शुरुआत में हुआ था तो 2 बसों से इसकी शुरुआत हुई थी
1: जी।
0: 2 बस में हम लोग 100-150 महिलाओं को लेकर के गए थे। उसके बाद पिछले वर्ष ये संख्या बढ़कर के 15 बस तक पहुंची। और चूंकि धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ते गए, एक पवित्र उद्देश्य है, तो कई संस्थाएं, कई लोग जुड़े, प्रशासन का भी इसमें सहयोग है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं, वो स्वयं भी इस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं
1: जी।
0: तो उनका भी सहयोग काफी कुछ रहा है
1: जी।
0: तो व्यवस्था होती है, क्योंकि लगभग 200 बसों की आवश्यकता इसके अंदर हमें पड़ी है
1: जी।
0: तो शासन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं, कह लीजिए कि पूरा शहर इस 84 महादेव की यात्रा में जो भी सहयोग है वो करने के लिए तत्पर है। तो बस एक प्रयास है कि
1: जी
0: ये आंकड़ा और आगे तक जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सभी का बृहद प्रयास और एक मानवीय संस्कारों से भरी पहल आप कर रहे हैं। महेंद्र जी, इस यात्रा में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच रही होगी?
0: देखिए, इसके पीछे सोच ये रही है कि जब इतने लोग एक साथ एक धार्मिक कार्य में इकट्ठा हो रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें पर्यावरण जो है उसके प्रति हम जो है करें कि भाई कम से कम हर व्यक्ति जो इस यात्रा में जो शामिल हो रहा है, तो कम से कम वो 5-5 पौधे जहाँ रहते हैं अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, जहाँ बगीचे हैं वहाँ पर लगाए। तो ये हमारी ओर से प्रयास है और उनको हम लोग मुहैया करा रहे हैं हमारी तरफ से, हमारी संस्था की ओर से पौधे, कि वो अपने जो पर्यावरण है उसके लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। और वो प्रेरणा हम दे रहे हैं कि वो भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी, भाई ये वृक्षारोपण जो है, पर्यावरण है, ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए।
1: कुल महेंद्र जी, कि एक सनातन का, धर्म का, परंपरा का तो आपका पावन उद्देश्य है ही, लेकिन साथ में आज की जो ज्वलंत समस्या है कि पर्यावरण का तेजी से क्षरण हो रहा है, तो उसे भी आप लोग इस यात्रा में इस उद्देश्य के माध्यम से जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। महेंद्र जी, आज के युवाओं को सनातन संस्कृति और ऐसे आयोजनों से जोड़ने के लिए इस यात्रा के माध्यम से क्या प्रयास किया जा सकता है?
0: देखिए, यही तो माध्यम है सनातन के प्रति जोड़ने का। मेरा ऐसा मानना है कि यदि सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है तो हमें अपने तीज त्योहार, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत पुराण हो, चाहे भगवत गीता हो, रामायण हो, कल्याण हो, शिव पुराण हो, तो बचपन से हमें ये प्रयास करना चाहिए सभी को, सारे पेरेंट्स को, कि बच्चों को इसका अध्ययन करवाया जाए। पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्योंकि
1: हमसे दूर हो रहे हैं,
0: दूर हो रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है और लैपटॉप आ गया, मोबाइल है, टेलीविजन है, तो वो चीजें अब दूर होती जा रही है। तो अपना यह प्रयास है कि लोग धर्म के प्रति वापिस लौटे,
1: बिल्कुल पुनः इस जड़ों से जुड़े जो हमारी ही जड़ें हैं। महेंद्र जी, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए इस पवित्र श्रावण मास और 84 महादेव यात्रा के अवसर पर आपका संदेश क्या होगा?
0: सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी यहाँ पर आपके माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो भाई मेरा ये मानना है कि हमारे 4 धाम है जो, तो 4 धाम की यात्रा सभी को जरूर करना चाहिए। कम से कम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार आप और जितना हो सके धर्म से जुड़ने का प्रयास करें, अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज जीवन एकांकी हो गया है पूरी तरीके से। और इस एकांकी जीवन से यदि आपको भयमुक्त रहना है तो धर्म का रास्ता अपनाना होगा। तो फिर देखिए सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कैसे आती है और आप अपने जीवन में किस तरह से तरक्की करते हैं।
1: जी बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत ही सकारात्मक विचारों से आपने हमें अवगत कराया, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी, बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल जी।
1: जय श्री महाकाल। 84 महादेव दर्शन यात्रा के आयोजक शशांत चंदेरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। शशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। शशांत जी, आपसे प्रश्न है कि इस विशाल 84 महादेव दर्शन यात्रा की शुरुआत कब और किस उद्देश्य को लेकर हुई?
2: इस साल जो ऐतिहासिक और जो भव्य यात्रा होने जा

0: इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। तो हम कुछ फ्रेंड लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहीं ये डिस्कस हुआ कि यार शहर में एक 84 महादेव यात्रा होने जा रही है। उस दिन हमने प्रण लिया था कि इस यात्रा को हम पूरे उज्जैन शहर की हर एक महिला, हर एक घर के लोग इस यात्रा में शामिल हों।
1: जी
0: तो ये यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 4 साल पहले इस तरीके से हमने करी थी।
1: जी शशांक जी, इस वर्ष की यात्रा को पिछले वर्षों से किस प्रकार अलग और विशेष जगह जाकर प्रेरित करना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना अपने आप में एक बहुत विकट कार्य है और उसे आपने बखूबी अंजाम दिया है। शशांक जी, 10,000 से अधिक मातृ शक्तियों की भागीदारी कोई छोटी बात नहीं है, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है?
0: देखिए, इसमें व्यवस्था ये है कि जैसे बहुत दूर दूर से लोग इस यात्रा में शामिल होने उज्जैन आ रहे हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है उज्जैन के लिए और हम सब लोगों के लिए कि बाहर से जैसे दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, वहाँ तक से हम लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उनकी सुबह नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर में भोजन की व्यवस्था और शाम को भी, शाम हो जाती है 7:30-8 बजी जाती है, तो शाम के भोजन की भी व्यवस्था इस यात्रा में करी गई है।
1: सुदृढ़ व्यवस्था,
0: हर पड़ाव पे चाय, पानी, मेडिकल की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं करी हुई है।
1: जी बिल्कुल, इतनी बड़ी यात्रा को एक मूर्त रूप देना अपने आप में बड़ा कार्य है और बड़े सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आप इसे मूर्त रूप दे रहे हैं। शशांक जी, इस यात्रा के माध्यम से सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का कौन सा संदेश जा रहा है?
0: देखिए, 84 महादेव जो हैं, मतलब इनकी अगर विशेषता अगर देखी जाए तो हम लोग मंदिर बनाते हैं, वहाँ शिवलिंग स्थापित करते हैं, और 84 महादेव जो हैं ये स्वयंभू हैं, ये स्थापित नहीं करें, ये प्रकट हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है इस यात्रा के माध्यम से कि हर एक व्यक्ति, मतलब चाहे उज्जैन का हो चाहे बाहर से आने वाला हो, हर देश हर प्रदेश से जीवन में एक बार 84 महादेव के दर्शन जरूर करें।
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। शशांक जी, एक प्रश्न है कि इतना बड़ा आयोजन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो आपके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका आपने समाधान किया?
0: चुनौतियाँ आती है बट पल भर में निकल जाती है।
1: जी,
0: क्योंकि ये कार्य जो है ये हमारा कुछ भी नहीं है।
1: जी,
0: हम तो सिर्फ इसके, देखा जाए तो हम लोग टीम मेंबर हैं।
1: जी,
0: सब लोग मिलके ये काम जो है ये हमारे आराध्य देव बाबा महाकाल का, ये समझिए कि इस काम के लिए हमें चुना गया है।
1: जी जी,
0: तो हम हमारी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं।
1: जी,
0: और कुछ सारी व्यवस्थाएं वहीं से होती हैं।
1: जी,
0: और बाकी की भी जो व्यवस्था है वो भी वहीं से होगी।
1: जी बिल्कुल बाबा,
0: इसीलिए ये 10,000 का जो टारगेट है ये सब इजीली हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल शशांक जी, इस आयोजन में स्वयं सेवकों और समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग किस प्रकार?
0: जी जी जी, बहुत सारे इसमें समाज के लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत सारी समाज के, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं।
1: जी अच्छा, सभी का सहयोग?
0: जी जी जी, सभी के सहयोग से ये कार्य होता है।
1: जी जी शशांक जी, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए इस यात्रा से जुड़ा आपका कोई संदेश आप देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को मेरा यही संदेश है कि एक बार जीवन में, उज्जैन तो सभी आते हैं, अपन बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, लेकिन जीवन में एक बार 84 महादेव दर्शन जरूर करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत संदेश आपका हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए। धन्यवाद शशांक जी,
0: बहुत बहुत
1: आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उज्जैन की पावन धरती पर 84 महादेवों की परंपरा, श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत संगम है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ उपस्थित हैं पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरिजी महाराज। आइए उनसे जानते हैं 84 महादेव यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है और यह यात्रा समाज को क्या संदेश देती है। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। गुरुदेव, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को 84 महादेव यात्रा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताइए।
2: देखिए, उज्जैनी का यदि पुराणों के आधार पर देखा जाए तो एक राक्षस के वध के समय पर उसके 84 जगहों पर जो दूषण के जो अंग गिरे, उन सभी जगहों के ऊपर शिवलिंग का आविर्भाव हुआ और उन्हीं स्थानों को 84 महादेव की उपमा दी गई। इस यात्रा का यदि हम स्वरूप देखा जाए तो हमारी 84 लाख योनियां जिन्हें कहते हैं, मतलब 84 लाख प्रकार की हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं, इन सारे जीवन के स्वरूपों से गुजरते हुए जब मानव योनि को हम प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी यादें जिन्हें कहेंगे, बहुत सारे कर्मों को भी हम आगे लेकर के आते हैं।
1: बिल्कुल,
2: और उन कर्मों का विलोपन होता है तो सदैव रूप से देखा गया के आकाश हो,

0: पृथ्वी हो या पाताल हो, संचित पाप विनाशक लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम। तो संचित कर्मों को यदि आपको विलोपित करना है, 84 महादेव की यात्रा को अवश्य करें।
1: बिल्कुल गुरुदेव, इस यात्रा का पावन लाभ यह है कि उसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल सकती है और हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। गुरुदेव, उज्जैन को शिव नगरी कहा जाता है, 84 महादेवों की परंपरा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आपकी दृष्टि में क्या है?
0: देखिए, बड़ी सिंपल सी आप बात समझिएगा इसको, बड़ा सरल उल्लेख है कि हमारा जो चतुष्टय है, शरीर मन बुद्धि आत्मा
1: जी,
0: ये चार प्रमुख चतुष्टय है और इन्हीं के अंदर हमें 21 परिधियां बनाई गई। तो कालांतर के अंदर एक बात स्पष्ट होकर के आई कि यदि हमें शरीर के अंदर शुद्धि लानी है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य करना है, तो उज्जैन के अंदर इस प्रकार के शिवलिंग है जहाँ से आपको शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जैसे हम करोहन के अंदर जाते हैं विशेष तौर पर, तो वहाँ पर हमें शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार से मानसिक व्याधियों से मुक्ति के लिए भी अनेकानेक शिवलिंग है यहाँ पर 84 महादेव में। आत्मा की बुद्धि की भी शुद्धि के लिए, उनके भी स्वच्छता के लिए, स्वस्थता के लिए यहाँ पर शिवलिंग है और इनका बड़ा धार्मिक महत्व है। ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस बेस है, यानी नाभि की शिवलिंग है। महाकालेश्वर को कहा गया कि नाभि की एक शिवलिंग है, और आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा कि नाभि के आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी संचरण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जब घूमेंगे तो उनके अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उनका जो विद्युतीय क्षेत्र है, बड़ा चमत्कारी है।
1: जी गुरुदेव, बहुत अद्भुत। गुरुदेव, आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में शिव साधना व्यक्ति को किस प्रकार मानसिक शांति प्रदान कर सकती है?
0: देखिए, शिवो अहम के भाव से हम देखे शिव को क्या समझ करके चलते हैं। व्यक्ति विशेष शंकर के स्वरूप के अंदर जिसे चित्रांकित कर दिया गया कि गले के अंदर नाग है, चटा में से गंगा बह रही है, किंतु इनको आप अपने अंदर स्थापित करिए। जब तक आप स्वयं को शिव नहीं मानेंगे, जब तक आप स्वयं को उस उत्कर्ष पे नहीं ले जा पाएंगे। आज की भागा दौड़ी के अंदर आप शिव के जीवन को समझने का प्रयास करें, बिन कथाओं के माध्यम से, आदम निगम तंत्र के माध्यम से, और आप ये पाएंगे कि शिव पार्वती के संवाद में शिव ने सदैव से यह कहा कि जीवन अपने आप में एक प्रायश्चित जन्म है। ये जो मृत्यु लोक है, इसके अंदर हम सब पिछले जन्मों का दंड भुगतने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए आए हैं
1: जी।
0: कि आप यदि इस पृथ्वी लोक के ऊपर आते हैं
1: जी,
0: तो इस पृथ्वी लोक के ऊपर ही एकमात्र देवादिदेव महादेव ने भी एक संदेश दिया कि ये इतनी खूबसूरत पृथ्वी है, इसके ऊपर आप रहेंगे, धरा पे रहेंगे, तो यहीं पे पुण्य अर्जन कर पाएंगे। तो आप जीवन को आनंद की तलाश में गुजारे, न कि किसी व्याधि की तलाश में। जीवन आनंद की खोज है, ये शिव दर्शन सिखाता है।
1: जी बिल्कुल, जीवन आनंद की खोज है और शिव में अगर हम आनंद ढूंढेंगे तो अपने आप को पूर्ण आनंद से परिपूरित पाएंगे। गुरुदेव, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपका आशीर्वचन या संदेश क्या होगा?
0: तो हमारे श्रोताओं को समझना चाहिए कि श्रुति और स्मृतियों को समझे और इस जीवन के अंदर तनाव नाम का कोई विषय है नहीं। आप प्रत्येक क्षण आनंद से जिए, हर विषय वस्तु को आप एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। वही मोनोटोनी के अंदर, वही एक ही प्रकार के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपका जीवन अवसाद से परिपूर्ण हो जाएगा, बोरियत से परिपूर्ण हो जाएगा और उसके अंदर सृजनात्मक अभिरुचि नहीं रहेगी। तो बेहद क्रिएटिव रहिए, आनंदित रहिए और सदैव दूसरों को भी आनंद दीजिए, यह मेरी अपेक्षा है आपके श्रोताओं से।
1: धन्यवाद गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम नमो नारायण।
2: आज इसी पावन यात्रा से जुड़ी विशेष वार्ता को हमारे साथ साझा कर रहे हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि सोलंकी जी, जो इस आयोजन समिति से जुड़े भी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी विशेष बातों को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
3: जय श्री महादेव।
2: जय श्री। सर, आपसे एक प्रश्न है कि 84 महादेव दर्शन यात्रा से जुड़े अनुभवों में आध्यात्मिक चेतना और हमारी संस्कृति की दृष्टि को आप किस प्रकार से देखते हैं?
3: राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी, 84 महादेव की यह नगरी, 84 महादेव में हमारे चार द्वारपाल, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस नगरी को हमारे पुरातन में, साहित्यों में 9-13 की नगरी बोलते हैं। 9 कोश और 13 कोश। 9 कोश मतलब ये लगभग 50 किलोमीटर का दायरा होता है। इसके अंदर चारों द्वारपालों के बीच में ये जो 50 किलोमीटर दायरा जो है, दायरे के अंदर उज्जैन विद्यमान है। उज्जैन तो आदि अनादि काल से जाना जाता है, इसलिए 84 महादेव की यात्रा का एक बड़ा महत्व है। जो लोग करते हैं उनको बहुत पुण्य प्रताप मिलता है।
1: जी बिल्कुल सर, उज्जैन ऐसी पावन धरा है जहाँ पर यात्रा का अद्भुत आनंद, आत्मिक आनंद के

0: रूप में वही महसूस कर सकता है जो इस यात्रा में सहभागी बनता है। सर एक प्रश्न है, 84 महादेव यात्रा जैसी सांस्कृतिक परंपराएं उज्जैन के आध्यात्मिक विरासत को किस प्रकार आगे बढ़ाती है?
1: अवंतिकायाम भीतावतारम मुक्ति प्रदानाय सज्जनानम अकाल मृत्यु परिलक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। यह बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी के अंदर जो लोग इस यात्रा को करते हैं, जो लोग इस यात्रा के अंदर शामिल होते हैं, और यह जो आयोजन हमारा हो रहा है, जब चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसमें कई माताएं बहनें भाइयों के द्वारा यह यात्रा होती है। उस यात्रा का सभी लोग आनंद लेते हैं, आइए आप भी आनंद लीजिए।
0: जी सर बिल्कुल, बहुत अद्भुत आनंद का क्षण है ये। इस यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति सहभागिता कर रही, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं सर?
1: माँ अन्नपूर्णा के स्वरूपों के अंदर हमारी माताएं बहनें 84 महादेव की यात्रा करती है। इस पूरे सावन मास के अंदर कलश यात्रा लेके अपने माथे के ऊपर लेके गांव गांव से, शहर शहर से लोग कावड़ यात्रा लेके और कलश यात्रा लेकर कई माताएं बहनें आती है, और एक ऐसा माहौल बन जाता है, भगवा साड़ी के अंदर पहनकर एक लाइन के अंदर हमारी माताएं जब शहरों के बीच रोड के ऊपर निकलती है तो यह नगरी देव नगरी है। ऐसा लगता है कि देवता भी उनका स्वागत करने के लिए धरती के ऊपर उतर गए हैं।
0: बिल्कुल सर, ऐसा अद्भुत संस्कृतिमय ऐसा माहौल हो जाता है कि लगने लगता है कि स्वयं ईश्वर इस धरती पर उतर गए हों। सर युवाओं को उज्जैन की धार्मिक विरासत और 84 महादेव परंपरा से जोड़ने के लिए यह यात्रा किस तरह सफल सिद्ध हो सकती है?
1: निश्चित तौर पर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यही तीज त्यौहार रहते हैं, यही पर्व रहते हैं जिसमें हम हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको सहभागिता बना सकते हैं। वो धर्म को समझेंगे, मूर्ति पूजा को समझेंगे, हमारे धर्म के श्लोकों को समझेंगे, संस्कृत को समझेंगे, तो ही आने वाले टाइम पे हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, और आने वाली जो नई पीढ़ी है उसमें भी हम हमारे संस्कार डालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे आयोजन नव पीढ़ी के लिए संस्कार का काम करते हैं।
0: बिल्कुल सर, आज की युवा पीढ़ी में संस्कारों को प्रतिस्थापित करने में ऐसे आयोजन, ऐसी परंपराएं निश्चित तौर से अद्भुत कार्य करती है। सर 84 महादेव यात्रा और श्रावण मास का सुंदर पावन अवसर, तो इस अवसर पर आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपका पावन संदेश क्या होगा?
1: आकाशे तारका लिंगम पाताले हट केशम मृत्यु लोके महाकालम लिंगम त्रया नमोस्तुते। ये महाकाल की नगरी है, अवंतिका की नगरी है, देवों के देव महादेव की नगरी है, तीनों लोकों के राजा यहाँ विराजमान हैं, और तीनों लोकों के राजा के रूप में महाकाल विराजमान है। इसलिए मैं आकाशवाणी के श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता हूँ, श्रावण मास के मात्र में महादेव के दर्शन करने से, महाकाल दर्शन करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। तो आइए, यह उज्जैन है, अवंतिका है, कई सारी नगरियां हैं, सप्तपुरियों में से एक नगरी है। सम्राट विक्रमादित्य के टाइम का अखंड भारत की राजधानी रही उज्जैनी है। सबका स्वागत है, और उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए, और आने वाला सिंहस्थ 2028 है उसको सफल बनाने में हमारा सबका सहयोग कीजिए। जय महाकाल।
0: जी धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सारगर्भित और सुस्पष्ट तरीके से इस यात्रा और इससे जुड़ी विशेष जानकारियों से हमें अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आइए जानते हैं प्रीति धानक जी से, जो नगर महिला मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं और महिला विकास एवं सर्वधर्म कल्याण समिति की अध्यक्ष भी हैं। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। प्रीति जी सबसे पहले अपने बारे में और इस आयोजन से अपने जुड़ाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग हमारी समिति के माध्यम से पिछले कई वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, और चूंकि संगठन में एक दायित्व है हमारे पास, दायित्व का निर्वाह करते हुए भी चूंकि महिला मोर्चा से है, तो वहाँ भी हम लोग महिलाओं से ही जुड़े हुए अपने कार्य कर रहे हैं, और आगे भी महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग आगे उस दिशा में कार्य करते रहेंगे।
0: जी जी बिल्कुल प्रीति जी, बहुत सुंदर और नेक उद्देश्य को लेकर आपकी ये यात्रा होने जा रही है। प्रीति जी, इस वर्ष 84 महादेव दर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इस वर्ष 84 महादेव यात्रा का मुख्य उद्देश्य अगर मैं आपसे कहूँ, पिछले 4 वर्षों से तो लगातार ये यात्रा चल ही रही है और यात्रा में संख्या बल भी अधिक रहा है, किंतु इस वर्ष आप देखेंगे कि 10,000 से अधिक बहनों के लिए संख्या होने जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है बहनों के लिए जो परिवार में कार्य करती रहती हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, तो शिव भक्ति के साथ उनको जोड़ना और सेवा, समर्पण और धर्म जागरण इस बार की यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है।
3: जी बिल्कुल, नारी को संगठन क्षमता से अवगत कराना, उनमें जागरूकता लाना, इस उद्देश्य को लेकर भी आप ये यात्रा होने जा रही है। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में सहभागिता, प्रीति जी समाज को क्या संदेश देने जा रही हैं?
2: जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि महिलाएं अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार को संभालते हुए जब समाज में इस प्रकार का कोई धर्म जागरण का कार्यक्रम होता है और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उसमें उपस्थित होती हैं, तब समाज में महिलाओं का जो भूमिका है और देश के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए वो एक पिलर का काम कर रही है, ये हम इस यात्रा के माध्यम से और संख्या के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं।
3: जी बहुत ही सुंदर उद्देश्य के साथ की यात्रा होने जा रही है। प्रीति जी, इस यात्रा की तैयारियों में महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है?
2: इस यात्रा की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें मैं जो प्रारंभ से ही देख रही हूं, तो विशेष कार्य होता है कि महिलाओं को जोड़ा जाए किसी कार्यक्रम से, तो महिलाएं हमारे लिए महिलाओं को जोड़ रही हैं इस कार्यक्रम से, और उसके बाद सेवा का भाव, प्रसादी वितरण और ऐसे अन्य अन्य कई सारे कार्य जैसे अनुशासन विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा आगे महिलाओं के माध्यम।
3: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी इतने सुंदर विचारों से हमें अवगत कराने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पुण्य आयोजन की जानकारी और इसके आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। हमें विश्वास है कि यह यात्रा श्रद्धा, सेवा और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
4: अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम। अब आपको सुनवाते हैं शिव की भक्ति से ओतप्रोत एक मधुर भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जरथॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मैं हूं अदिति निगम, नमस्कार। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ साथ ही आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। अब हम आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:21 पर मालवी गीतारे गूंज, मालवी समाचार, मालवी लोकगीत। रात 8 आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर डगर विकास की का रिले किया जाएगा। 8:30 पर फिल्म संगीत का रिले किया जाएगा। समाचार संध्या 8:45 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 9 आप सुनेंगे News@9। उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे 9:15 पर, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवारीय संगीत सभा। हिंदी में समाचार का रिले आप सुन सकेंगे रात 11:00। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का रिले किया जाएगा। 11:10 पर आप सुनेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। ये थी आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम आपको सुनाते हैं कल दिन भर साथ ही शाम तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर आप सुनेंगे संकेत

पर। हिंदी में समाचार का रिले आप सुन सकेंगे सुबह 6 बजे, 6:05 पर वंदन वार, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान। संगीत सरिता आप सुन सकेंगे 6:45 पर। सुबह 7 बजे आप सुन सकेंगे महाकाल वंदन। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार का रिले सुन सकेंगे। 7:20 पर सुप्रभात उज्जैन का आप रिले सुन सकेंगे। सुबह 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर उज्जैनी आरजे।

9:30 पर बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10 बजे आप सुन सकेंगे उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा का रिले किया जाएगा। सुबह 11 बजे आप सुन सकेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर आप सुन सकेंगे यादों की महफिल। विविध भारती की गीतमाला का प्रसारण आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। फिल्म संगीत कार्यक्रम का रिले आप सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर दोपहर समाचार का रिले सुन सकेंगे। सदाबहार नगमे फिल्मी गीत का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे 2:30 पर। दोपहर 3 बजे सखी सहेली का आप रिले सुन सकेंगे। दोपहर 4 बजे सेहतनामा। शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे युवाणी का रिले। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे भजन संध्या का अनुप्रसारण। 6:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम। 6:40 पर आप सुन सकेंगे आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल से। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली से समाचार। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण की जानकारी। 7:10 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर आप सुन सकेंगे माटी री बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत। रात 8 बजे आप सुन सकेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर सुर्खियों में। 8:30 पर फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 पर पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग। अभी आपने सुनी आज रात और कल तक रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार सुनेंगे विविध भारती भोपाल केंद्र से। नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत सा बने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अगले 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्त मध्य प्रदेश की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में जन भागीदारी का किया आह्वान। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी और प्रदेश में अगले दो दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना। 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अगले 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने की अपील की।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मिनट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इस अभियान में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक व सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आज नियंत्रण करते हैं, निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और कहा कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन वे कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर, बरहामपुर और तप्तपानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के बेरसिया में लगभग 50 करोड़ की लागत से बने शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस दौरान संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी भ्रमण करेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां मतगणना की ताजा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 84 महादेव दर्शन यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धा, साधना और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव समरसता, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक हैं। वहीं कल श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती होगी। इसके बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर आचार्य श्री समय सागर महाराज ने कहा कि अहिंसा, दया और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। इंदौर में राजस्थान के जैसलमेर सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा आरिफ को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सेफी नगर स्थित घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इमली बाजार कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मेजर हमजा आरिफ की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जैसलमेर में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। इनमें बॉक्सिंग के 10 पदक शामिल हैं, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल और प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीते। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद भारत के कुल 39 पदक हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैतूल जिला मुख्यालय पर कल 3 अगस्त को कृषि उपज मंडी बडोरा में महोत्सव आयोजित होगा। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में गो शेडो एवं भूसा भंडार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान को तेज कर दिया है। पिछले 10 दिनों में 57 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो,
2: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं अब वक्त हो गया है।

मालवा की माटी, परंपराओं, लोकगीतों और जनजीवन की बात का। तो आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं प्रोग्राम मालवी गीतारी गूंज।

नमस्कार का साथ राम राम हमारा किसान साथियों। तो सबसे पहला तो यह बता दो हमारे थम के कैसा हो। अरे हमारा कहवा मतलब ये हो कि चकाचक तो हो नहीं, क्योंकि अगर थम चकाचक रहोगा तो मैं चकाचक रहूँगा, मैं चकाचक रहूँगा तो थम चकाचक रहोगा। तो देखो मैं तो आज आशा करूँ ने भगवान की आज प्रार्थना करूँ कि थम सब चकाचक रहो। तो सबसे पहला तो थम सबको स्वागत है, वंदन है और उनका साथ घनो घनो अभिनंदन भी है। देखो यो तुम्हारो भाई सुमित कुमार अणि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी प्रसारण होने वाला विशेष मालवी गीतारी गुंज कार्यक्रम के एक बार फिर थम सबका बीच में लेके आई गई हुई। आज रविवार है न, अपनी तिथि के देखा तो आज अपना सावन महीना का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वही गई है, मतलब चौथ वही गई है ने। सावन तो चालू वही गई है, सावन की तो बात ही निराली, तुम्हारा जैसा मालूम है सावन में श्रावण की बरसात, उकाबात शिव की भक्ति, आय हाय हाय श्रावण में चार चांद लगे थे श्रावण के। तो आज है 2 अगस्त ने, हमारा तो मालूम ज होगा कि आज का दिन मतलब कहीं है नहीं मालूम। चलो मैं बता दूँ तो आज है फ्रेंडशिप डे, अर्थात अपना जीवन का अमूल्य रिश्ता को दन। देखो कोई सी भी उम्र हुई, बचपन हुयो या जवानी हुई या बुढ़ापो हुयो, सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्तों रहे अपना जीवन में वो रहे एक मित्र को। ने मित्रता दिवस अपने यो याद दिलाए, ने यो अनुभव दिलाए कि बिना मित्र के जीवन मानो अधूरो है। कोई भी हो सबका जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिस पे अपन आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। मित्र एक ऐसा ताड़ा की चाबी है जो कोई और से खुले नहीं खुले, पर एक मित्र के खुल सके। और इन्हीं संदर्भ में एक बार फिर आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी अपना सब श्रोता उनके ने उनका सब मित्र उनके मित्रता दिवस की घनी घनी बधाई ने अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम यह आशा करा कि अनि संसार में तुम्हारी मित्रता अमर रहे। तो या तो हुई गई आज का दिन पे बात, अब आओ थोड़ी जानकारी ले ला आज का अपना मुख्य विषय पे। तो आज अपन मुख्य रूप से बात करवा वाला हाँ कि कैसे अपन अपना गाँव खेड़ा को विकास कर सकता हाँ, क्योंकि वह लाइन नहीं सुनी तुमने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तब विपत्ति निदाना। इको अर्थ यो है कि चणी गांव या घर में लोक वन के में एकता बुद्धि और अच्छी बुद्धि हो, वहाँ हर प्रकार की समृद्धि और विकास आए है, आपसी झगड़ा में विकास रुकी जाए है। तो केवा को मतलब यो कि अगर अपन सब मिली जुली के अपना गांव का विकास में योगदान दांगा तो अपना गाँव को विकास हो पाएगा। नहीं तो खाली अपन होचा के खाली सरकार ने गांव को सरपंच ने पंच ने ये सब मणि के गांव को सब काम कर दे ने विकास कर दे तो अपना गांव को विकास यो संभव नहीं है। जहाँ तक अपन सब मिली के साथ साथ चली के कोई काम नहीं करांगा जहाँ तक कई नहीं होनो है। और इन्हीं संदर्भ में अपन एक गांव को सरपंच से अन्य विषय पर चर्चा भी करांगा, जिसमें इनसे अपन सब जानकारी लाएंगे कि एक आम आदमी अपना गाँव को विकास में कैसे भूमिका निभा सके। उसका बाद और भी घन सारी बात करांगा अपन आज का, क्योंकि मुख्य रूप से जो मौसम कैसो कहीं है तो मौसम अपने खेती बाड़ी की जानकारी लांगा, क्योंकि वह भी जरूरी है। अभी तो जही देखो वही चकाचक उबा है क्योंकि उनका अनुरूप पानी भी पड़ी रहो है। देखने रहा हम रोज ऐसा पानी पड़ रहा बिल्कुल उनका अनुरूप, जैसा कि जैसे ही बोले कि हमारे पानी की जरूरत पड़ी रही ने पानी उफरती फट देगा ने पड़ी रहो है। तो इकाले सोयाबीन की फसल भी अभी लह लह रही है बिल्कुल शानदार तरीका थी। तो अनि विषय पे तो और आगे बात करांगे सही, पर जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अपन अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का पहला मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना है। तो आओ आज भी अपना कार्यक्रम में मालवी समाचार के सुन ला अपन।

तो आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र ती प्रस्तुत है मालवी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ मूत हमारा भाई सुमित कुमार। तो सबसे पहले अपन ये बुलेटिन का मुख्य समाचार देखिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करी है। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिला का बेरसिया में शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया भवन को लोकार्पण करो है। और उसके बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना काले होएगा। अब समाचार विस्तार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करी है। उनने युवाओं की नशा से दूर रहने और अगला 100 सप्ताह तक चलने वाला अन्य अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करी है। प्रधानमंत्री साहब ने बोलियो है कि विकसित भारत को लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब देश को युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। वहां दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल का मिनट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अन्य अभियान में शिरकत करी है। उनने प्रधानमंत्री साहब का अन्य संबोधन के सुनियो और उपस्थित युवाओं और नागरिकों के नशा मुक्त भारत नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलायो है। मुख्यमंत्री साहब ने सभी ती हर प्रकार का नशा से दूर रहने और स्वस्थ जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण में भागीदारी निभाने को आह्वान करियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ का अवसर पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने भोपाल का में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लियो है। उनने उपस्थित लोग के नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और बोलियो कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने बोलियो है कि नशा व्यक्ति परिवार और समाज सभी के नुकसान पहुंचाए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिला का बेरसिया में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बना शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया भवन को लोकार्पण करियो है। उनने बोलियो है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करे के शिक्षा की गुणवत्ता के बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साहब ने बोलियो है कि सांदीपनि विद्यालय में आधुनिक तकनीक का साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय करो जा रो है ताकि विद्यार्थी के बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके है। उसका अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 84 महादेव दर्शन यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ करियो है। अन्य मौका पर डॉक्टर साहब ने बोलियो है कि उज्जैन खाली एक नगर नहीं है बल्कि भगवान महाकाल की पावन नगरी है। उनने बोलियो है कि यह यात्रा श्रद्धा साधना और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुँचाने को माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री साहब ने बोलियो है कि भगवान शिव समर सता करुणा और लोक कल्याण का प्रतीक था। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना काले यानी 3 अगस्त के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होएगा। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्र से शुरू होएगा जबकि 8:30 बजे ईवीएम का वोट की गिनती करी जाएगा। अनिकाले 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। मीडिया का लिए भी एक अलग ती मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगा। खंडवा में किशोर कुमार की जयंती पर 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस को शुभारंभ मैराथन दौड़ का साथ हुयो। महापौर अमृता अमर यादव और प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बी गोड़ा ने दौड़ की हरी झंडी दिखाई के रवाना करियो। मार्च विश्व स्तनपान सप्ताह का तहत जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करो जा रो है। विधायक कंचन तनवे ने बोलियो है कि जन्म का 1 घंटा का भीतर शिशु के माँ को दूध पिलाना बेहद जरूरी है। बात उज्जैन की करा तो सिंहस्थ 2028 का दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखता हुआ आगर मालवा जिला में तैयारी शुरू करी गई है। अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने बड़ौद क्षेत्र का 3 प्रस्तावित हाल्ट एरिया और पड़ाव वाला स्थलों का निरीक्षण करियो। उनने संबंधित अधिकारी और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने का विस्तृत प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। खरगोन जिला का बड़वाह क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुई संरक्षित मादा चिंकारा के ग्रामीणों ने आवारा कुत्ता का हमले से बचायो। वन विभाग और पुलिस की मदद से उनका प्राथमिक उपचार कराया गयो और बेहतर इलाज के लिए उनके इंदौर भेजे गयो लेकिन रास्ता में उनकी मौत हो गई। वन विभाग का अनुसार पारंपरिक जाँच में शिकार या विष प्रयोग का कोई संकेत नहीं मिला है। अब जाता जाता बात मौसम की करा तो प्रदेश में अगला 2 दिन तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त के मानसून फिर सक्रिय होएगा। एक बात प्रदेश का कई जिला में भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त के छतरपुर पन्ना सतना सीधी और सढ़ोल
समेत कई जिला में, जबकि 5 अगस्त के रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी करो है। तो श्रोताओं, ई था आज का अपना मुख्य मालवी समाचार।

मतलब अन्य भाषा के कहीं भी परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है। अन्य भाषा में अपने, या भाषा अगर कहीं चली रही है कि कहीं करी रहा हो, किस तरह कहीं काम चली रहो हो, कहाँ व्यस्त हो आजकल, तो इनमें कहीं ना कहीं अपनोपन अलग ही नगे ही जाए हैं ना। अपन भी यो कार्यक्रम रोज लेके आए तुम्हारा बीच में 7:20 पे अपनी मालवी भाषा में, तो यह भी एक अनूठी पहल है अपनी संस्कृति के बचाव की, अपनी बोली के बचाव की। क्योंकि जैसा तुम्हारे मालूम है कि अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं बिछड़ती जा रही है, तो अपनों पहलो कर्तव्य यो बने हैं कि अपन अपने सब मिली के इके बचाएं। तो अपन सब मिली के अगर कोई काम करांगी, देखो आज मित्रता दिवस भी है, तो उसको भी यो संदेश दे कि अगर सब मिली जुली के अगर कोई काम करांगे, अपन संस्कृति के बचाव काम करांगी, तो अपनी संस्कृति बची पाएगा। नहीं तो अपन सोचांगे खाली सरकार है जी में काम करे और ये एक जनों जाई के संस्कृति बचाई दे, तो वो तो नहीं होएगा। देखो अगर कोई भी काम सब मिलीजुली के करांगी तो अच्छा हो ही पाएगा वो। तो हमारी बात सुनो, अपन ये पे बात करांगी सही, पर बात तो और करांगी, पर उका पहला भूलो मत, अपनो कार्यक्रम है आज मालवी गीतारी गूंज। और मालवी गीतारी गूंज को कई मतलब हो मालूम है ना तुम्हारे? मालवी गीतारी गूंज को मतलब हो ही है कि अपना रेडियो पे मालवी गीत सुनना। तो आओ अपन भी अपना कार्यक्रम में अपने मुख्य विषय पे जावा थी, पहला एक यो प्यारो सो मालवी गीत सुन ला।

तो देखो, मालवा की धरती पे गांव खाली रेवा की जगह नहीं है, अपितु आपसी मेलजोल, संस्कार, मेहनत और आत्मनिर्भरता को आधार है। आजकल गांव में कई जगह नई हवा चली रही है, जब युवा शक्ति पंचायत की कमान संभाली रही है। कम उम्र में सरपंच बनने वाला युवा केवल चुनाव जीतवा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव के नई दिशा देवा को संकल्प लेवे है। आज अपन भी अपना कार्यक्रम में एक ऐसा युवा सरपंच से बातचीत करवा रहा हाँ, जो गांव की तरक्की, किसान की खुशहाली और महिला की भागीदारी और युवा शक्ति पर विश्वास रखे हैं। देखो, गांव भारत की आत्मा है, जिसको गांव मजबूत होएगा उसको देश मजबूत होएगा। आजकल विकास को मतलब खाली पक्की सड़क, बिजली अने मकान बनाना नहीं है, बल्कि विकास को मतलब है गांव को हर मनक खुश होए, हर मनक सुखी होए, किसान समृद्ध होए, जवान के रोजगार मिले, बालक उनके अच्छी पढ़ाई मिले, महिला आत्मनिर्भर बने अने बुजुर्ग के सम्मान मिले। जब गांव को हर परिवार खुशहाल होगा तभी सच्चा विकास कहवाएगा। पहला गांव में कच्चा रास्ता, पानी की कमी, बिजली की परेशानी, स्कूल में सुविधा नहीं, अस्पताल दूर दूर होया करता था, किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहता, तो रोजगार नहीं मिलवा कारण जवान मन शहर की ओर पलायन करता था। लेकिन आज सरकार की योजना, पंचायत की मेहनत और गांव वाला की भागीदारी थी आलाद बदली गया है। गांव को विकास एक दिन में नहीं हुई है, या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पंचायत, सरकारी विभाग, किसान, महिला समूह, युवा मंडल और आम जनता सब बराबर को योगदान जरूरी है। जब सब लोग मिली बैठी के गांव की जरूरत समझेगा और ईमानदारी से काम करेगा तो छोटा से छोटा गांव भी मिसाल बनी सकेगा। सबसे पहलो काम है साफ सफाई। जिको गांव साफ रहेगा उनमें बीमारी नहीं कम फैलेगा, और घर में शौचालय होए, नाली साफ होए, कचरों निर्धारित जगह पर डाले, उन्हें प्लास्टिक का उपयोग कम करे, या एक आदर्श गांव की पहचान है ने, तो ज गांव सुंदर लगेगा ने स्वस्थ भी रहेगा सुंदर का साथ साथ। तो आज कई गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें लोग खुद श्रमदान करी ने रास्ता साफ करे हैं, गांव का सामाजिक भवन साफ करे हैं, पौधा लगावे हैं, स्वच्छता को संदेश भी फैलावे हैं। पानी गांव को जीवन है। देखो, पानी बिना खेती भी अधूरी है ने जिंदगी भी अधूरी है। अनिका लिए वर्षा जल संचयन, तालाब घेरो करनो, कुआ सुधारनो, खेत तालाब बनानो और ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी तकनीक अपनाना जरूरी है। जब पानी बचेगा तो खेत भी बढ़ेगा और पीने को पानी भी साल भर मिलेगा। खेती गांव की रीढ़ है और अपना देश की अर्थव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो आज किसान के परंपरागत खेती का साथ आधुनिक तकनीक अपनावा की जरूरत है। मृदा परीक्षण कराना, उन्नत बीज उपयोग करना, समय पे खाद और सिंचाई करना, प्राकृतिक खेती अपनानो और फसल विविधीकरण करनो समय की मांग है। जिको किसान गेहूं, सोयाबीन का साथ सब्जी, फल, मसाला, फूल और पशुपालन जोड़ लेवे हैं, उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी जाए है। पशुपालन भी गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे हैं, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालन से किसान के रोज आय मिले है। दूध उत्पादन बढ़ेगा तो डेयरी व्यवसाय भी मजबूत होएगा। गोबर ती जैविक खाद बढ़ेगा और बायोगैस बने हैं, जिको खेती और पर्यावरण दो ही खातिर लाभदायक है। यो महिला बिना गांव को विकास अधूरो है। देखो, आज स्व सहायता समूह माध्यम ती महिला बचत करे है, छोटा उद्योग चलावे है, पापड़, अचार, मसाला, अगरबत्ती, सिलाई, बुनाई, डेयरी अने कई प्रकार का रोजगार करे हैं। महिला आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा तो पूरा परिवार मजबूत बनेगा। बालकवन की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सरकारी स्कूल में नियमित पढ़ाई, खेलकूद, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा और संस्कार युक्त

0: मिलनो भी जाए। पढ़ा लिखा युवा है कि भविष्य में गांव को नेतृत्व करेगा और या नई सोच लाएगा। आज डिजिटल युग, इंटरनेट और मोबाइल को उपयोग सिर्फ मनोरंजन खातिर नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई, खेती, सरकारी योजना, ऑनलाइन सेवा और रोजगार खातिर भी होना जरूरी है। डिजिटल गांव बनेगा तो लोगों के शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आओ अनिश संदर्भ में अपना गांव का विकास के लिए के सरपंच वाणी जो बताएगा अपने उज्जैन जिला का माकड़ोन तहसील का गांव ढाबला उर्दू का सरपंच प्रतिनिधि श्री विशाल जी पांडे। तो आओ सुना इनसे कि एक गांव को विकास में एक युवा, एक गांव को आम नागरिक कैसे अपनी सहभागिता निभा सकते है। तो सुनो इनकी वाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विशाल पांडे है। मैं ढाबला हरदू में निवासरत हूँ और यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमें, हमारे श्रोताओं को आपके सरपंच बनने की यात्रा के बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए।
2: मेरे सरपंच बनने की यात्रा में मेरा सेवा भाव का कार्य निरंतर चालू रखा और आज भी हमारे गांव में ऐसी कोई विधवा महिला नहीं है जिसकी पेंशन नहीं मिल रही हो, ऐसे कोई वृद्ध जन नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रही। मैं चैलेंज करता हूँ जो भी ऐसे हैं तो मेरे को बताएं, मैं घर जाके उनकी पेंशन चालू करने का प्रयास करता हूँ। गरीब परिवार है, उनको राशन की व्यवस्था के लिए मैं निरंतर लगा रहता हूँ कि कैसे उनको राशन प्राप्त हो जाए। माननीय सरपंच साहब के नेतृत्व में ये सब काम मैं करता रहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप अभी युवा सरपंच है, तो कम उम्र में सरपंच बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: मेरा सरपंच बनने का कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु गांव के सभी हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठ जन, ग्राम ढाबला हरदू के सभी ग्रामीण जन, सबका ऐसा भाव था कि मैं चुनाव लड़ूं और सरपंच बनूं। सबके सहयोग से मैंने चुनाव भी लड़ा और उनके जहां तक मुझसे बन सका है मैंने पूरा पूरा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। मेरी यही मंशा थी कि नहीं, मैं गांव के लिए कुछ करूं और निरंतर मैं करने का प्रयास कर रहा हूं।
1: तो सरपंच साहब, हमें आप ये बताइए कि आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी और उसे दूर करने में आपने क्या कदम उठाए?
2: देखिए, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या, एक सक्षम परिवार तो कहीं भी जाके कार्यक्रम कर सकता है
1: जी,
2: लेकिन गरीब परिवार के लिए कार्यक्रम करने में बाहर जाने में बड़ी असुविधा होती थी। इतना पैसा वो खर्च नहीं कर पाते थे। एक गार्डन में आम व्यक्ति कार्यक्रम करने जाता है तो उसको कम से कम 40,000-50,000 रुपए का तो एक कम से कम देना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हमने यहाँ पे दो टीन शेड बनाए हैं ढाबला हरदू में, दो दो टीन शेड बनाए हैं और दोनों टीन शेडों को हमने मिनिमम शुल्क पर रखा है कि 2,000 से 2,500 रुपए, 3,000 रुपए लास्ट उसका हमने टैक्स इसका यहाँ पर रखा है। इस कम से कम टैक्स में हम उनको सुविधाजनक साफ सफाई, स्वच्छता, परिसर वगैरह सब क्लियर करके उपलब्ध कराते हैं। गरीब परिवार को सुविधा होती है, सावधानी उससे व्यवस्थित कार्यक्रम भी हो जाता है। एक गरीब परिवार की बालिका की बेटी का विवाह होता है तो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे हो जाता है और आराम से वो कार्यक्रम कम से कम चार्ज में यहाँ पे कार्यक्रम कर लेते हैं। हमने हमारे गांव में स्वच्छता के लिए गाड़ी, कचरा वाहन, ताकि माता बहनों को इधर उधर जाके कचरा फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो मिनिमम शुल्क 40 रुपए महीना हम उसका लेते हैं और वो टैक्स भी हम पंचायत के माध्यम से ही हम उसको जमा करवाते हैं। इससे हमारे गाँव की माता बहनों को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उनके घर पे जाकर कचरा गाड़ी खड़ी होती है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीण जनों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा मिल सके और हमारा गांव सुचारू रूप से समृद्ध और सशक्त बन सके और आत्मनिर्भर भी, उसके लिए भी हम प्रयास निरंतर कर रहे हैं।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि सरपंच बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही?
2: मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरा गांव संतुष्ट रहे, मेरे गांव को मैं क्या क्या सुविधाएं दिला सकूं, यहाँ पे कोई समस्या आती है तो मैं कैसे उनके लिए खड़ा रह सकूं। आधी रात को मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, कहीं भी समस्या आती है तो मैं सतत हर जगह जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके परिवार के साथ में मैं सदैव खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ और मेरी यही अपेक्षा है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं ये काम सरपंच बन के करूंगा, मेरा उद्देश्य शुरू से ही ये है कि नहीं भाई, गाँव और आम जन के लिए मैं क्या कर सकूँ और उनका कैसे मैं भला कर सकूँ।
1: अच्छा, एक बात और ये कि आपकी नजर में गांववासी को गांव के विकास में क्या अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए?
2: देखिए, गांव, हमारा गांव, एक सरपंच ही गांव का विकास नहीं करा सकता है, सरपंच के साथ साथ ग्रामवासियों का भी सहयोग इसमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि काम करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हर छोटी मोटी समस्याएं, नाली की समस्या रहती है, किसी के यहाँ कुछ अतिक्रमण की समस्या रहती है, सबको मैनेज करके काम करना। उसके बाद हम जब काम करते हैं पंचायत में, हम किसी माध्यम से आज हम निर्माण कार्य करवाते हैं, हमने रोड बनवाया, नालियां बनवाई, हमने जैसे तैसे चबूतरे बनवाए, मंदिरों के आसपास हमने उनको सौंदर्यीकरण किया, मंदिरों में कुछ जगह पे हमने सामुदायिक भवन भी बनाए, सामुदायिक भवन के माध्यम से छत डालने का प्रयास भी किया। तो हम सतत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनमें हमारे गांव ढावला हरदू के ग्रामीण जन सीधे सीधे हमारा पूरा पूरा सहयोग करते हैं हर काम में। जहां भी हमें लगता है कि नहीं यार, हम जाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पानी की व्यवस्था करवाना, वहां पर वो कैसे क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था, मजदूरों को कैसे, मतलब पूरी तरह से पूरे गांववासी सहयोग करते हैं। और एक सरपंच ही काम, सरपंच काम कर देता है, काम करके सरपंच अपने घर चला जाता है, लेकिन उसको वापस रोकथाम करना कि भाई इस रोड को खराब नहीं कर दे, इस रोड की इस ये नाली बनाई है तो नाली के साफ सफाई कैसे करना है, ये काम हमारे गांव ग्रामवासी सहजता से करते हैं, और पूरा पूरा सहयोग ग्राम पंचायत का वो करते हैं। इसी कारण हमारा गांव आज विकास की ओर अग्रसर है, और सब काम हम सहजता से कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जन इसमें पूरा पूरा हमारा सहयोग करते हैं, हर काम में वो सहयोग करते हैं।
1: अच्छा विशाल जी, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आपका गांव ढाबला अर्दू सांसद आदर्श गांव की श्रेणी में आता है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ऐसा क्या विशेष है आपके गांव में जो आपको ये ओहदा मिला हुआ है।
2: देखिए, मैं सर्वप्रथम हमारे जो सांसद आदरणीय अनिल फिरोजा जी है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे गांव को सांसद आदर्श गांव में ऐड किया। हमारा गांव सांसद आदर्श गांव में ऐड होने से हमारा ये फायदा हुआ है कि हम कोई हमारी किसी भी प्रकार की फाइलें यदि जाती है तो वो तत्काल स्वीकृत हो जाती है। तो हमको इसका बहुत लाभ मिला है, हमने इससे ग्रामीण हमारे गांव के लिए काफी हमने विकास करने का प्रयास किया है। हम जहाँ भी फाइल हमारी लगाते हैं तत्काल हमारी फाइल सेंक्शन होकर आ जाती है, हम ग्रामवासियों को उसकी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, हम किसी भी माध्यम से पीछे नहीं है। हमारा गाँव क्योंकि सांसद आदर्श गाँव के अंतर्गत आता है, कहीं भी हमारी फाइल जाती है तो तत्काल उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय सांसद श्री अनिल फिरोजा जी के प्रयास से सतत हमारा हमारी ग्राम पंचायत का विकास बंद नहीं हुआ। जब से इस सरपंच की शपथ ग्रहण हुई है हमारी पंचायत ढाबला हरदू में, तब से ही काम चलता आ रहा है, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो नाली का हो, पुलिया का हो, सामुदायिक भवन का हो, टीन शेड का हो, या कोई भी अन्य लाभ भी, जैसे संबल योजना में लाभ हम दिलाते हैं तो तत्काल हमारी फाइलें सेंक्शन हो जाती है, हमारे हितग्राहियों को लाभ मिल जाता है। हमने समथिंग 60 से 70 लाख रुपए हितग्राहियों को पर्सनल उनके खाते में डलवाने का प्रयास किया है, वो माननीय हमारे सांसद जी के प्रयास से किया है। हमने सतत जो भी योजनाएं आती है उस योजनाओं का लाभ निरंतर जनता तक पहुंचता है, और हमने 1 करोड़ के ऊपर, मैं 70 लाख बोल रहा हूँ, 1 करोड़ के पार हमने निजी व्यक्तिगत हितग्राहियों को, गरीब परिवार को, पात्र परिवार को लाभ दिलाने का प्रयास किया है। वो चाहे सरकार की संबल योजना हो, चाहे वो किसान समृद्धि योजना हो, या कोई भी योजना हो, तो हमने पीड़ित परिवारों को लाभ दिलाने का सतत प्रयास हमारे सांसद आदर्श गांव के माध्यम से हमने किया है।
1: और यही कारण है कि आपका गांव सांसद आदर्श गांव की श्रेणी में आता
2: जी
1: है।
2: बिल्कुल।
1: अच्छा विशाल जी, एक बात और ये बताइए कि आप एक युवा सरपंच है, तो आप युवा पीढ़ी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि जो शिक्षा दर होती है वो गांव के विकास में क्या भूमिका निभाती है।
2: देखिए, शिक्षा दर हमारे गांव के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि काम सरपंच का काम है काम करने का है, लेकिन उस काम को समझने का काम आम जनता का होता है, आज के युवा का होता है कि सरपंच हमारा सरपंच क्या कर रहा है, हमारे सरपंच साहब ने क्या काम किया, और इस काम से हमारे ग्रामीण जन को क्या लाभ मिल रहा है, और इसको सुचारू रूप से वो हमारे, जैसे हमने किसी बात को उन्होंने से बोला कि यार आपको ये काम करना है, तो उनने उस बात को समझा। हमारे गांव के युवाओं को हम बोल देते कि नहीं, हमको आज रविवार है, हमको आज शमशान में चलना है, हम सामूहिक सब प्रयास करके यहाँ पे स्वच्छता का काम करेंगे। हमने उनके सामने बात रखी, वो समझ रहे हैं इस बात को, तभी वो हमारे साथ आके आज उसमें हमारी मतलब श्रमदान कर रहे हैं। हम बोल देते कि नहीं, आज हमको इस परिसर की सफाई करना है, मंदिर परिसर की सफाई करना है, तत्काल युवा हमारे साथ प्रेरित होकर आगे आके काम कर रहे हैं। तो वो शिक्षित हैं, समझ रहे हैं, तभी हमारा साथ लाकर हमको हमारा हाथ बटा रहे हैं, और हमारे गांव के सभी युवा साथी, पूरा युवा वर्ग, मातृशक्ति, सभी इस चीज से सहमत है, और लगभग हमारा गांव, पूरा गांव शिक्षित है और इस चीज को समझता भी है, और पूरा पूरा सहयोग हमारे गांव गांव के विकास में हमारा गांव करता रहता है। और हमारे गांव को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, पूरे गांव के युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, मातृशक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि वो सतत हमारे गांव के विकास में उनकी अहम भूमिका है, और सूत्रधार ही हमारे गांव के ग्रामीण जन है। जो भी गांव में विकास कार्य होता है, सरपंच को वोट उन्होंने दिया है, तो ये काम जो हो रहा है ये भी उन्हीं की बदौलत हो रहा है। सरपंच

0: कोई घर बैठ कर सरपंच काम नहीं कर सकता है। सरपंच को खड़ा किया, चुनाव जिताया, वोट दिया, और आपने वोट दिया उसी के माध्यम से सरपंच गांव का काम कर रहा है, तो वो श्रेय उन्हीं को जाता है, ये विकास का श्रेय सरपंच को नहीं जाता है। ये श्रेय पूरा पूरा हमारे गांव ढाबला आरदू की जनता जनार्दन, और मैं तो मेरी जनता जनार्दन को भगवान मानता हूँ, उन्हीं के माध्यम से आज सब काम कर रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से बूढ़े वृद्ध जनों के, हमारी विधवा माता बहनों के, और जो भी यहाँ पर कल्याणी, जैसे हमारे मोहन जी, हमारे भारतीय जनता भाजपा की सरकार ने जैसा कि विधवा का नाम सीधा सीधा कल्याणी कर दिया, तो मैं कल्याणी माता बहनों से सबका आशीर्वाद के से मैं सदैव यहाँ पर काम करने का प्रयास करता हूँ, हमारे सरपंच श्रीमती रेखा जोशी जी के, उनके नेतृत्व में, और मैं सतत ये प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनों को लाभ मिल सके, और मेरी यही मंशा रहती है, सदैव ग्रामीण जनों के लिए लगा रहता हूँ, ग्रामीण जन सहयोग करते हैं और इस निरंतर हमारे गांव का विकास कार्य चलता रहता है।
1: तो जैसा कि अपना सरपंच साहब ने बताया कि कैसे अपन छोटा छोटा कदम अपना गांव में बड़ा विकास ले सकता है। देखो, गांव में स्वास्थ्य सुविधा भी जरूरी है। आंगनवाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, गर्भवती महिला की देखभाल, पोषण अभियान और समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने थी कई लोग स्वस्थ रहे हैं। बीमारी थी बचाव को इलाज थी कई गुना सस्तों और अच्छो हुई है। गाँव को विकास खाली सरकार को काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हर नागरिक अपना फर्ज निभाएगा, पंचायत ईमानदारी से काम करेगा और युवा आगे आवेगा और महिला भी बराबरी थी भाग लेगा, तो गांव कोई भी गांव को विकास नई ऊंचाई के छू सके है। आज जरूरत अनी बात की है कि हम सब अपना गांव और अपना परिवार के समझा, सड़क, स्कूल, तालाब, मंदिर, पंचायत भवन, खेल मैदान, पेड़ पौधा और सार्वजनिक संपत्ति सबकी जिम्मेदारी समझे है। जब अपनापन बढ़ेगा तो विकास भी तेज गति से होएगा और हमारा विश्वास है कि एकजुट समाज, जागरूक नागरिक, मेहनती किसान, शिक्षित युवा और सशक्त महिला, ये सब अगर मिल जाए तो गांव को विकास की नई ऊंचाई पे ले जा सकता है। गांव को विकास भविष्य अपना हाथ में है। अगर सब मिल के काम करेंगे तो माटी की खुशबू, संस्कृति की पहचान और विकास की रफ्तार तीनों साथ साथ बढ़ेगा, और यही सच्चो गांव को स्वराज है और यही आत्मनिर्भर गांव की पहचान है। तो देखो, केवा को मूल महत्व यो थो कि अपन सब मिली के अपना गांव का विकास में अपना योगदान दा, श्रमदान दा, जितना हो सके इतना योगदान दा, जिसे कहीं हुई नहीं कि अपनों गांव को विकास दिन दुगनी और रात चौगनी होएगा। अब आओ आज का थोड़ा मुख्य विषय, जब मित्रता दिवस यो बहुत बड़ो दिन है अपना सबका लिए, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ला अपन। तो मित्रता जीवन को वो अनमोल रिश्तों है जो विश्वास, अपनापन, सहयोग और निस्वार्थ प्रेम की मजबूत नींव पे टिके हुए हैं। एक सच्चो मित्र हमेशा दुख सुख को साथी बनी के हर परिस्थिति में हमारा हौसलों बढ़ाए है। जब जीवन में कठिनाई आए तब एक मित्र का साथ हम नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे है। मित्रता खाली साथ रहने को नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरा की भावनाओं के समझनों, सम्मान देनों और हर कदम पे साथ निभाने को वादों है। सच्चा मित्र हमारी कमियां के स्वीकार करे है और हमारे हमें सही राह दिखा है और हमारी सफलता पे तो अधिक प्रसन्न हो ही चाहिए भी। तो मित्रता दिवस हमें हमारे मित्रों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने को अवसर दे है। आइए इस विशेष अवसर पे हम सब मित्रों को ये धन्यवाद देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जीवन भर विश्वास, ईमानदारी और स्नेह के इस पवित्र रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। आप सभी को आकाशवाणी की पूरे परिवार की तरफ से एक बार पुनः मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, आजकल इतना झुंड, क्योंकि बात तो अपनी खत्म नहीं हुई है पर टेम खत्म हुआ है। तो आज अपन ने मुख्य रूप से अपना मालवी गीतारी गूंज कार्यक्रम में एक ऐसा विषय पे बात करी है, गांव का विषय पे, गांव का विकास का विषय पे, जिन्हें अपने यो सीख मिले है कि अगर अपन सब मिली के अपना गाँव को विकास करना चाहें दुनिया की कोई ताकत अपने गांव का विकासशील गांव में तब्दील करने वाली नहीं रोकी सकती है। और यो कद हुई पाएगा जब अपन सब मिली के एक साथ कोई काम करांगे। अब फिर काम चाहे तो अपना गांव की स्वच्छता को ध्यान रखना हो या फिर कोई काम चल रहा हो में अपनी मदद करनी हो, इन सब चीज़ के अपन अगर एक साइड लेके चला और एक प्रो टीम वर्क का रूप में काम करा, तो अपना गाँव को विकास हमेशा ही होता जाएगा। तो आजकल इतरोज घणो, क्योंकि बाकी तो हम सब होश सही संभाल लोगा, तो अपनो समय वाड़ो है तो हमारे दो इजाजतें आती और ऐसा नया नया विषय रोज सुनता रहो और हमें हमारे साथ जुड़े रहो आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र।

FM 102.5 MHz पे उसके साथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे आप हमें सुनी सकता हो, और सुनी तो सकता हो उसका साथ हमारे सोशल मीडिया पे हमारा पेज है तो उन पे हमारे बताई भी सकता हो कि कहीं कहीं हम चीज़ कौन सा विषय हम तुम्हारे साथ ले सकता हूँ। तो आज को नमस्कार, जय श्री महाकाल के साथ शुभ रात्रि।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की ये झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। नमस्कार। श्रोताओं, अब आप जल्द ही सुनेंगे सुर्खियों में का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज की एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
1: जी तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सकें। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: तिवारी जी, कैसे देखते हैं इसे आप?
2: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वह एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सकें, इसे जीवंत कर सकें, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सकें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
1: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है। और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयं सेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जारी किया, जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया। और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है। और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है, और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है, और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों तक प्राप्त करने और पूछने का प्रयास करेंगे।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
2: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है, और उसमें जो लक्ष्य है, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल के रूप में काम कर रही है, और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है। और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है, और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है, उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है, उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में, ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
2: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं। कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है, साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: तिवारी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
2: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना, तीसरा गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना, पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से। इसके अलावा परिवारों को जोड़ना, एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्यों में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। तो यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCV की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी, तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
4: सुर्खियों में
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रस्तुति है आकाशवाणी बैतूल की।

0: श्रोताओं, हमारा देश विविधतापूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और सुंदर वन्य जीव, इन्हीं के बीच बसे हैं हमारे वन ग्राम और वनवासी भाई बहन। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है। यहाँ 46 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहारिया और भारिया प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में देश की जनजातीय जनसंख्या का लगभग 14.7% निवास करता है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उराव जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भील घरों की दीवारों पर पिथौरा चित्रकला एक पवित्र परंपरा है। जनजातियां प्रकृति पूजक होती हैं और वृक्षों के समूह में सरना देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो फसलों की रक्षा का प्रतीक है। हर त्योहार, विवाह और खुशी के मौके पर सामूहिक नृत्य करने का प्रचलन है। जनजातीय महिलाओं के लिए गोदना सौंदर्य और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। फसलों की कटाई के समय नई फसल को देवी देवताओं को समर्पित करने की परंपरा भी है। विभिन्न रंग बिरंगी पोशाकें और आभूषण इन्हें प्रिय होते हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इस विषय पर आज हमारे साथ हैं श्री दुर्गादास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार। उइके साहब, आपका हम अपने आकाशवाणी केंद्र पर स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी वर्गों का विकास हो, उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लागू की गई है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है।
1: सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सौभाग्य है देश का कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आपका प्रश्न प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: तो मैं आपको बताऊं कि यह अभियान, जिसे अब धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में विस्तारित किया गया है, देश के दूरस्थ जनजाति गांवों में समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने का यह राष्ट्रीय मिशन है।
0: जी,
1: यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा से शुरू किया गया है, जिन्हें धरती आबा के रूप में समूचे भारतवर्ष में जनजाति समाज के भाई बहन उनको सम्मान देते हैं।
0: जी,
1: धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना चालू की, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसके माध्यम से हमारे जनजाति समाज के 63,843 गांव कवर होंगे।
0: जी,
1: 5 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के हमारे भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जनजाति समाज के जीवन स्तर को सुधारने का एक पावन पवित्र अभियान है, आत्मनिर्भरता का आंदोलन है, सम्मान और प्रगति का ये एक अवसर है। और इसके माध्यम से समूचे भारतवर्ष में लगभग 12.5 करोड़ भाई बहन हमारे रहते हैं, जिसपे उनके समग्र विकास की ये आधारशिला के रूप में ये योजना है।
0: उइके जी, इस अभियान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से?
1: इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य है, जैसे 100% जो बुनियादी सुविधाएं जनजाति समाज के भाई बहनों को मिलनी चाहिए।
0: जी,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क है, बिजली है, पानी है, उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका कैसे विस्तार हो, और उनके कौशल विकास के साथ में उनको रोजगार की उपलब्धता, उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के युवाओं का कौशल विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, पोषण और सामाजिक सुरक्षा, सरल शब्दों में यदि कहें तो हर जनजाति गांव विकास का केंद्र बने, यही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है।
0: तो जैसा भी आपने बताया कि ये हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में इस अभियान का क्या योगदान है?
1: यह अभियान मूलतः जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके गरीबी में कैसे कमी हम लाए, उनका कैसे समग्र विकास हो, स्थानीय स्तर पे कैसे रोजगार बढ़ाएं, और रोजगार के निमित्त तो वो निकटवर्ती जिलों और प्रदेशों में पलायन करते थे
2: जी।
1: तो उनका पलायन कैसे रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने में यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुमानित प्रभाव लगभग लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ, इसमें 63,845 गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और जनजाति युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
0: हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी जनजातियां निवास करती हैं, और हमारे बैतूल की बात करें तो यहां भी जनजाति बहुल ये जिला है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर ये योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी?
1: पूरे देश में मध्य प्रदेश जो जनजाति जनसंख्या के मामले में अग्रणी राज्य है, यह अभियान मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लगभग 267 विकास खंडों के 11,377 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है।
0: और बैतूल जिले की यदि हम बात करें तो इस अभियान की कितनी प्रगति हुई है?
1: मेरा अपना संसदीय क्षेत्र बैतूल हरता हरसूद है, और बैतूल जिले में इस अभियान के तहत लगभग चिन्हित 554 ग्रामों में 12,104 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना की लगभग 82 समूह जल प्रदाय योजना ये स्वीकृत है। 3,90,321 करीब ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, और 99 ग्रामों के विद्युत विहीन 617 घरों में विद्युत उपलब्ध कराई गई है। लगभग इसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से 10 नवीन छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं, और बैतूल में इस योजना के अंतर्गत लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है।
0: उइके जी, बैतूल जिले में कितने लाभार्थी हैं जिनको पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का लाभ दिया जा रहा है?
1: इस अभियान से बैतूल जिले में लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीण भाई बहनों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।
0: अभियान के तहत जनजाति गाँव में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और ग्रामवासियों को कैसे प्रेरित किया जाएगा इसकी ओर आने के लिए?
1: इस अभियान के अंतर्गत मूलतः पक्की सड़कें कैसी बने, बिजली, सोलर व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां एवं स्कूल उन्नयन, आजीविका मिशन के तहत रोजगार, साथ ही ग्रामों को प्रशिक्षण, जागरूकता और सहभागिता के माध्यम से युद्ध स्तर पर प्रेरित किया जा रहा है।
0: और एक बात जो देखी जाती है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बुनियादी आवश्यकता है, तो क्या इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों को स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उनको भी बेहतर बनाया जाए?
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुख्य केंद्र बिंदु है, और इस अभियान के तहत भवन विहीन एवं जर्जर शालाओं के प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। 10 नवीन 100 सीटर छात्रावासों की स्वीकृति लगभग प्राप्त हो चुकी है। 38 छात्रावासों में आवश्यकता अनुरूप मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही 23 छात्रावासों के अधीक्षक भवन निर्मित किए जा चुके हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकासखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, भवनों का निर्माण और जो ऑफिशियल जो स्टाफ है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उसकी भी उपलब्धता की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
0: उइके जी, एक और मुश्किल देखी जाती है कि जो हमारे जनजातीय भाई बहन रहते हैं वो कुछ पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, क्या पहुंच मार्ग बनवाए जाएंगे, किस तरह उनको विकास की ओर मोड़ा जाएगा?
1: आजादी के बाद तो लगभग 62 वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र लगभग सड़क कनेक्टिविटी से विहीन रहे, लेकिन हमारे आदर जुड़ चुके हैं और सात संपर्क विहीन ग्रामों को 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भी अपने यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं
0: जी।
1: और आने वाले कल में आप देखेंगे कि कोई भी मजरा, टोला, गांव सड़कों से विहीन नहीं होगी, इसको प्राथमिकता के साथ में इसको पूरा किया जा रहा है।
0: उइके जी, एक और बात आती है कि जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है वो इंटरनेट का युग है, और बिना इंटरनेट के बहुत से काम करना ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं है, और इसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र सुविधा से वंचित रहते हैं, तो इस अभियान में इंटर
1: के लिए खासतौर से बैतूल जिले के 10 विकास खंडों में 554 ग्रामों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु नवीन टावरों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है और जहां जहां भी इस तरह की विसंगतियां हैं उसको भी बहुत शीघ्र दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।
0: उइके जी, एक अंतिम प्रश्न की ये जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है इसका लाभ लेने के लिए हमारे जनजातीय भाई बहन कितने उत्सुक होते हैं?
1: आपको विदित हो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी बहन हमारे परिवार की माता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है और खासतौर से जब यह अभियान के निमित्त आपका प्रश्न है तो यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं है
0: जी,
1: बल्कि यह जनजाति गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये अनुपम अद्वितीय और असाधारण प्रयास है। जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है और हम सब उसमें सम्मिलित है
0: जी।
1: कि देश के 140 करोड़ भाई बहन मिलकर हम 2047 तक हमारे राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जब ये अंतिम सिरे पर जो भाई बहन है समाज है ये जब सर्वांगीण विकास इनका होगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन पाएगा।
0: ओके जी, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हम सबका ये सपना जल्दी ही पूरा हो। आज

नमस्कार, मैं हूं आदित्य निगम, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है फिल्म संगीत प्रोग्राम का, जिसमें विशेष रूप से आज आप सुनेंगे दोस्ती पर आधारित गाने। श्रोताओं, दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है, जहां खुशियां बांटी जाती हैं और दुख आधे हो जाते हैं। दोस्ती को समर्पित आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म गबन से, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार हसरत जयपुरी द्वारा लिखा गया।

श्रोताओं कहते हैं सच्चा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे दोस्त जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अब आपको सुनवाते हैं खुद गर्ज फिल्म से गाना। गायक नितिन मुकेश, संगीतकार राजेश रोशन और गाने के गीतकार हैं इंदिवर और फारूक केसर।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा ने दोस्ती को हमेशा एक अलग स्थान दिया है। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म सुहाग से, जिसमें आवाज शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है। गाने के बोल आनंद बख्शी के हैं।

श्रोताओं, दोस्ती पर आधारित गीतों की संगीतमय सफर को यहीं देते हैं विराम। मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ इजाजत, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। अब आप जल्द ही समाचार संध्या का रिले सुनेंगे विविध भारती दिल्ली से। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
4: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
6: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
7: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितम्बर तक मकान सूचीकरण

0: और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
3: ग्लासगो के प्रसिद्ध

0: will be headlined by Scottish rock band Simple Minds. Moreover, Bems, Kami Barnes and Sandy Tom will also perform, while Australian singer Delta Goodrum will be making her third appearance at a Commonwealth Games ceremony. From India, Rashmika Mandanna and Shankar Mahadevan will headline India's cultural showcase in Glasgow. Doordarshan will broadcast the ceremony live for the fans. Chirag Jha from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India's GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंबों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जलजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। और 2026 के दौलत मुश्तरका मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का वर्चुअल वसीले से आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम का आगाज हो रहा है।
3: मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत की वजह से लोग अपने मकासिद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। वजीर आजम ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है, बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है। वजीर आजम ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: मुल्क भर के 28,000 मकामात के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिनमें माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों, स्कूलों

0: कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब्स, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानियत से मुतालिक तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवां माली बरस की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा, जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है। ये अंदाजा मजबूत तरीन इकतसादी इंदियों, बेहतर सनअती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है। SBI की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतालिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है, जो जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की वजह से कम सतह पर थे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते की जेलों में बंद कैदियों की गैर तबई मौत की सूरत में उन कैदियों के कानूनी वारिसों को मुआवजा अदा करने की स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। इस बारे में दिल्ली हुकूमत के दाखिली उमूर के महकमे ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस स्कीम के तहत खसूसी हालात में 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा अदा किया जा सकता है। जेल अफसरान या अमले की जानिब से फराइज की अदायगी में कोताही, तिब्बी या नीम तिब्बी अमले की लापरवाही और कैदी की खुदकुशी के मामलों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम उन्हीं मामलों पर नाफिज होगी जहां दिल्ली की किसी भी जेल में नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद किसी कैदी की गैर फितरी मौत होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक नोटिफाई की गई इस स्कीम के न सिर्फ मखसूस हालात में मुतासरा कुंभों को बरवक्त राहत पहुंचाएगी बल्कि इंतजामिया की जवाबदही में इजाफा होगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मुंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। आसाम में मर्दुमशुमारी 2027 के तहत खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ एन्यूमरेशन आज शुरू हो गया। शहरी अब इसके लिए बने पोर्टल se.census.gov.in पर कुंभों और जाती मालूमात ऑनलाइन तरीके से दर्ज कर सकते हैं। खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने के अमल सेल्फ एन्यूमरेशन का मकसद लोगों को उनके घरों से ही मालूमात फराहम करने का मौका देना और मर्दुमशुमारी को ज्यादा शमूलियाती, आसान और शहरियों पर मरकूज बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ इन्यूमरेशन 16 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद 17 अगस्त से घरों की गिनती का अमल शुरू होगा जो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मर्दुमशुमारी के दूसरे मरहले के तहत इंदराज की गई मालूमात की तस्दीक और तौसीक की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने के पहले पीर के मौके पर कल भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्राव माहुलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। मंदिर मेडिकल टीमें और 24 घंटे एम्बुलेंस खिदमत तैनात की गई हैं। भारत में कोयले की पैदावार की शरह तरक्की पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल 7.51% रही। कोयले की बाजार में 17.34% की साल ब साल शरह तरक्की का अंदाजा होता है। सूरतेहाल के बारे में फौरी इकदामात करें। UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी की क्यादत में एक वफद ने न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में कई मीटिंग्स का इनेकाद किया। वफद ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने यहाँ बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे और शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद करे। वफद ने उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा किया जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। वफद ने मकबूजा इलाके में इंटरनेट और टेली मवासिलात खिदमात की बहाली, कर्फ्यू हटाने और बैन अल-अक़वामी मीडिया नीज इंसानी हकूक से मुतालिक तंजीमों पर से पाबंदी हटाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्हें रसाई फराहम करने के लिए भी कहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में सैलाब का पानी बतदरीज घट रहा है, तहम शदीद मुतासरा जिलों की सूरत हाल को अब भी चैलेंजों का सामना है। पीने के पानी की किल्लत, फसलों के शदीद नुकसान और मकानात की तबाही ने सैलाब से मुतासरा कुंभों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने ओडिशा के बेशतर हिस्सों में 5 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उड़ीसा में सैलाब का पानी बतदरीज कम हो रहा है, ताहम सबसे ज्यादा मुतासरा

0: बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों के लोगों को अब भी शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की किल्लत हो गई है, ट्यूबवेल आलूदा हो गए हैं और पानी में डूबे गांव में सांप और मगरमच्छ दाखिल हो गए हैं, जिससे मुकामी बाशिंदों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। फसलों को हुए शदीद नुकसान से किसान दिल बर्दाश्ता हैं और मकानात को हुए नुकसान की वजह से कुंबे अब भी खाना पकाने से कासिर हैं। रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और नुकसान भरपाई की जल्द अदायगी के लिए जिला कलेक्टरों से फौरी तौर पर पंचनामे दाखिल करने को कहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगले सैलाब का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, ताहम भारतीय महकमे मौसमियात ने ज्यादातर जिलों में अगले तीन दिन के दौरान तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: इधर केरला में शदीद बारिश के एक दिन बाद बारिश की शिद्दत में कमी आने के सबब कई जिलों के लोगों को राहत मिली है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला के 12 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जबकि 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल के लिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोवा के वजीर आला डॉ प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा की रियासती हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के लिए पूरी रियासत में अगले 100 हफ्ते के दौरान बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। सनखली में आज रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉ सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से ताउन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवो का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ग्लासगो में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और बहुत से रजाकारों को शुक्रिया करने का एक मौका। इस तकरीब के दौरान 2030 में अहमदाबाद में कराए जाने वाले 24वें दौलत मुश्तरक खेलों की मुंतकली की रस्म भी अंजाम दी जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, BEMZ, कैमी बार्नेस और सैंडी थॉम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गुलूकार डेल्टा गुडरैम दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की किसी तकरीब में तीसरी बार अपने फन
1: की संगमिल की हैसियत रखने वाली हुसूलियाबियां हुई। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमुई तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से अजबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नजर फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवा माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के

0: के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक्किद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
2: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन।
1: पूर्व एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और रानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट, जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स आना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम बहादुर बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, no melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja la la la la la la la la la la la la la la la la, this is melody, now is a brass beat, la la la la la la la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam taram taram tam pam pam pam da da, this is the brass duty, this is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke, then again is a melody, la ra la ra ra ra ra ra खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
0: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
3: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए।

मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है, वो सब कुछ इस गीत में है।

0: मतवाले बन आजादी के, हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है, एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
4: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याण सिंह हसरत जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: लिया। जय हिंद भयो, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज़ दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दीनेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of Shubha Sukha Chainaki is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, अहर तब आह्वान प्रचारित शुनि तब उदार बानी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब

0: see the Jaya Ho becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जन गण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी।

0: वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपियंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
1: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेट कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
2: एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya awards.
1: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain Pyare Degar Lagi, jo ek taal mein nibaddh hai. Drut khayal ke bol hain Chalo Hato Ji Chhel, Kahe Roke Gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

मम गम कर सर धनि रे गम द गम करि स मम गम कर सर धनि रे गम द गम कर स धनि ने धनि मर गम कर सन धनि रे गम द गम कर मम गम कर धीर धनि म द गम कर स प्यारे कर मम गम म गम म गम कर सन धनि रे गम द गम कर स मम गम म गम म गम कर सन धनि रे गम द गम कर स नि नि नि नि नि नि नि म द गम

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनीन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बरनीन जाए सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दीम तदारे दानी दीम।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BMZ कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
3: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. The self-enumeration facility for Census 2027 has commenced in Assam from today. Citizens can now submit their household and individual details online through the dedicated portal se.census.gov.in. The self-enumeration facility will remain available until August 16, ahead of the house listing operation and housing census scheduled to begin on August 17. Over 88 lakh 6,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of today, according to the Office of Chief Electoral Officer of Delhi. About 1 crore 45 lakh forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. In Odisha, the flood situation is improving as Mahanadi River recedes. However, the situation remains challenging in the worst affected districts. Shortages of drinking water, extensive crop damage and destruction of houses have added to the hardships of flood-affected families. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as the host for the centenary 2026.

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आवारा फिल्म से साथियों अभी आपने सुना। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, गीत संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जब हम इनका श्रवण करते हैं तो इनकी तासीर में खो से जाते हैं हम। सफर में हो या घर पर या कहीं भी, इन गीत संगीत की आवाजों का जादू एक सुंदर अनुभूति देता है।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म। मदन मोहन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।